मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ज और FM 100.1 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता लौकी की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। लौकी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसकी खेती दो मौसम में की जा सकती है, एक तो गर्मा मौसम और दूसरा है जो वर्षा ऋतु के लिए। वर्षा ऋतु के लिए लौकी की रोपाई जो है जून जुलाई में आपको करनी होती है। लौकी की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा नमीन प्रमुख हैं। अन्य कुछ जातियां भी हैं जिसमें पंजाब राउंड, पंजाब लॉन्ग, फैजाबाद सेलेक्शन, जूनागढ़ लॉन्ग टेंडर, कल्याणपुर लॉन्ग टेंडर प्रमुख हैं। भारतीय अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित कुछ किस्में हैं अर्क बहार। यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इसके लिए गर्म एवं तर जलवायु अच्छी होती है। लौकी की फसल पाले के प्रति असहनशील है। अधिक वर्षा एवं बादल वाले दिन इसमें बीमारी एवं कीड़ों के प्रकोप को बढ़ाते हैं। मौसम के अनुसार अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्में उपयुक्त होती हैं। लौकी की खेती किसी भी प्रकार में की मिट्टी में जिसमें जल निकास अच्छा हो उगाई जा सकती है। इसकी खेती कुछ अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि वर्षा ऋतु के लिए इसकी रोपाई के समय जून जुलाई है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर आप रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों को 4 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। 4.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है और एक स्थान पर 2 बीज 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। जहाँ तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है, यह उथली जड़ वाली फसल होती है, इसलिए उर्वरक को टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने से अधिक लाभ होता है। 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, नेत्रजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नेत्रजन आधी मात्रा जड़ के पास टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पौधे पर 2 पत्ती अथवा 4 पत्ती की अवस्था पर कुछ कृषि रसायनों का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें हार्मोन्स प्रमुख है। इससे पैदावार अधिक होती है। गर्मी के मौसम में फसल को अधिक सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, या जब वर्षा नहीं हो तो ज़्यादा फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन जाड़े के मौसम में 10 से 15 दिनों बाद ही आप सिंचाई करें। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। लौकी की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कुछ कीड़े भी इसमें लग जाते हैं जो कि इसको नुकसान करते हैं। उनमें कद्दू का लाल कीड़ा प्रमुख है, जो कि पौध अंकुरण के समय से ही नुकसान करता है और फल मक्खी भी नुकसान करती है। तो कद्दू के कीड़ों के नियंत्रण के लिए सुरक्षित कीटनाशियों का छिड़काव समय पर करना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कद्दू के लाल कीड़ा को खाने वाले जो पक्षी हैं उन्हें खेत में आमंत्रित करें और वे स्वयं इन कीड़ों का भक्षण कर लेंगे। इसके लिए खेत में सुबह के समय मूढ़ी या चावल का भूंजा जो है वो खेत में आप डाल दें। पक्षी खेत में आएंगे और कीड़ों को नष्ट कर देंगे, तो इस तरह से अपने आप कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से आप लौकी की खेती करें और लाभ उठावें।
0: आप सुन रहे थे खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता लौकी की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
3: यह सांसारिक जीवन कभी भी बलिदान, त्याग और कुर्बानी से खाली नहीं रहा है। जब से दुनिया कायम है, उस समय से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो हर मोड़ पर कुर्बानी, त्याग और बलिदान का जिक्र है, और आज भी अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। एक पिता अपनी चहेती पुत्री को कन्यादान कर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रहा है, और एक बेटी अपने माँ बाप का घर त्याग कर एक नई दुनिया बसाने चल पड़ती है। एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, यानी यह एक तरह से इंसान के धैर्य की आजमाइश है। उसी प्रकार ईश्वर अपने बंदे के धैर्य की परीक्षा लेता है और देखना चाहता है कि

0: मेरा बंदा इस इम्तिहान में कहाँ तक कामयाब है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अल्लाह ने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा और हुक्म हुआ कि तुम अपने लाडले फरजंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान करो। वो बेटा जो उम्र के आखिरी हिस्से में बड़ी दुआओं के बाद पैदा हुआ हो वो कितना प्यारा और अजीज होगा, ऐसी हालत में जहां एक तरफ बेटे की मोहब्बत दिल में हिचकोले मार रही हो और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म कि बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। ऐसी हालत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए इम्तिहान में खरे उतरे और अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला दी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया और उनकी जगह एक दुम्बा कुर्बान हुआ। उन्हीं की याद में ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाता है। यह साल का आखिरी महीना कुर्बानी पे समाप्त होता है और साल का पहला महीना यानी मुहर्रम भी कुर्बानी से ही शुरू होता है, यानी पहला और अंतिम महीना अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान होने का महीना है। लेकिन ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह से वापस आने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं, गोया यह त्यौहार एक दूसरे पर कुर्बान होने का पैगाम देता है। इसलिए वे लोग जो उस लायक हैं, जैसे डॉक्टर इलाज के लिए आज़ाद हैं, उन्हें गरीबों पर कुर्बान होने का जज्बा रखना चाहिए। एक शिक्षक को गरीब बच्चों के प्रति निशुल्क शिक्षा देने के लिए कुर्बान होना चाहिए। ऐसे कार्यों से समाज सेवा का भी पैगाम आम होता है और एक अच्छे समाज की रचना होती है, जो न केवल हमारे लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत लाभदायक है। कोई गरीब लाचारी की जिंदगी गुजार रहा है तो ऐसी हालत में वे लोग जिन्हें ईश्वर ने हर प्रकार से हष्ट पुष्ट बनाया है, उन्हें आगे आकर उनकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जो कुर्बानी हो सके देनी चाहिए। यही तो ईद उल अज़हा का पैगाम है। आइए आज हम ये तहिया करें कि एक दूसरे की भलाई के लिए जितना कुछ बन पड़ेगा हम वो करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के जज्बे से इंसान ऊंचा मकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया उसकी ठोकरों में होती है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

0: सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए भेंट वार्ता पेनक्रियाज की बीमारियां। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनय शरण और भेंटकर्ता सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं पेनक्रियाज की बीमारियों पर, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विनय शरण। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेनक्रियाज की हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2: पेनक्रियाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर में। यह पिछली दीवार के तरफ में रहता है, अमाशय के नीचे रहता है, और इसका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए है कि इसके द्वारा पाचन क्रिया

0: में भाग लेने के लिए एक एंजाइम का प्रोड्यूस करता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम, जिससे कि चर्बी वाले खाद्य पदार्थ को पचाने में जरूरत होती है। इसके अलावा यह एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन नाम के, जिससे कि मानव शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है
1: जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पेनक्रियाज में किसी प्रकार की कठिनाई आ जाए या कुछ संक्रमण हो जाए तो वो कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हो।
0: पेनक्रियाज में संक्रमण होने से या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है। सूजन होने से उसमें पहले मरीज को दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है और यह दर्द पीछे के तरफ में ज़्यादा रहता है। उसके बाद से उल्टी उल्टी होने की शिकायत रहती है, उल्टी होती भी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको साधारण मनुष्य झेल नहीं पाता है और तुरंत उसको इलाज के लिए जाना पड़ता है। फिर उसको जांच के द्वारा ही यह कायम होता है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, तो ऐसे हालत में उसको इलाज में मेडिकल ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स, खाना पीना रोक कर, नस में पानी चढ़ाना इत्यादि, यही इलाज इसका है और उसी से मरीज ठीक होता है
1: जी। तो आपने कहा कि इंसुलिन सेक्रेशन भी पेनक्रियाज का एक काम है, जब इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो किस प्रकार हमारे शरीर के शुगर लेवल में इम्बैलेंस हो जाता है, क्या कारण होते हैं?
0: पेनक्रियाज के हेड में, हेड ऑफ द पेनक्रियाज से एक हार्मोन बनता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, और इंसुलिन का सबसे मुख्य रोल होता है शरीर में जो भी शुगर, जो भी ग्लूकोज या शुगर या चीनी या शकरा जो भी हम खाते हैं वो ब्लड में दौड़ता रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ज़रूरी होता है। अगर इसमें किसी तरह की बीमारी हो जाती है जो, तो इससे यह गड़बड़ा जाता है, यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है।
1: हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ होने का कारण पेनक्रियाज में कुछ गड़बड़ी या खराबी होने से भी हो सकता है।
0: हाँ, साधारणतः अगर पेनक्रियाज के ऊपर वाले भाग में, हेड के तरफ में अगर गड़बड़ी नहीं है, अगर उसमें गड़बड़ी होती है जैसे कोई कैंसर हो गया, तो उस हालत में यह वास्तव में डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती है।
1: जी जी। अब अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमें कौन कौन से परहेज़ या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा पेनक्रियाज स्वस्थ रहे और ठीक ठाक काम करता रहे।
0: अल्कोहल सबसे बड़ा हानिकारक चीज़ है, शराब, किसी भी तरह का शराब हो, उससे पेनक्रियाज दूषित हो जाता है, संक्रमण होने का संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टोन होने से उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, गॉल ब्लैडर में सूजन होने से तुरंत इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो पेनक्रियाज में पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इन सब बातों के अलावा है, किसी तरह का पेट में चोट लगने से भी यह संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए इस सब चीज़ के तैलीय पदार्थ ज़्यादा खाने से भी पेनक्रियाज में गड़बड़ी हो जाती है, तो इस सब का उन लोग को ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल ही इसके लिए हानिकारक है।
1: जी, निश्चित रूप से अल्कोहल या शराब किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और पेनक्रियाज में होने वाली बीमारियों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, पेनक्रियाज की बीमारियाँ। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर विनय शरण और भेंटकर्ता सचिन कुमार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भारत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7 बजे से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, कथा सागर और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। 10:00 कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर नाटक का प्रसारण होगा खुद्दार, लेखिका होंगी प्रोफेसर मीना रानी और प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 12:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 1:00 लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकते हैं, कलाकार होंगे गोपाल भगत। 1:30 पर धारावाहिक पोषण की नींव पर स्वास्थ्य की 12वीं कड़ी आप सुनेंगे, लेखिका होंगी डॉक्टर आरती स्मिथ और प्रस्तुतकर्ता नामी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग, कलाकार होंगी रेशमा।

0: संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीत का प्रसारण होगा। कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे। कलाकार होंगी रत्ना। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 10 बजे शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। कलाकार होंगे अली अकबर खां। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पहले संस्कृत में आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणे

0: नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्यां एक पञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षीबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यते। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15 राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3 राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ़ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एडुटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षी प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशीला श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, कथा सागर और फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज ईद उल अजहा है, इसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए कुछ बातें करते हैं ईद उल अजहा पर। ईद उल अजहा मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रोताओं, यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा त्याग, बलिदान, प्रेम, दया और मानवता का संदेश देने वाला पर्व है। यह त्यौहार लोगों को ईश्वर के प्रति समर्पण और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। ईद उल अजहा का संबंध हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी की घटना से जुड़ा हुआ है। इस्लामी मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के सच्चे भक्त थे। अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम ने बिना किसी संकोच के अल्लाह की आज्ञा मानने का निर्णय लिया। जब वे अपने पुत्र की कुर्बानी देने लगे, तब अल्लाह उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। तभी से कुर्बानी की परंपरा प्रारंभ हुई और इस दिन को ईद उल अजहा के रूप में मनाया जाने लगा। श्रोताओं, ईद उल अजहा केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और मानवता का प्रतीक भी है। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं ताकि वे भी त्यौहार की खुशियों में शामिल हो सकें। समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भावना का वातावरण बनता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। श्रोताओं, भारत जैसे विविधता वाले देश में ईद उल अजहा बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हैं। यह त्यौहार राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को भी मजबूत करता है। श्रोताओं, ईद उल अजहा त्याग, सेवा और मानवता का महान पर्व है। यह हमें प्रेम, भाईचारे और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का संदेश देता है। हमें इस पर्व से प्रेरणा लेनी लेकर समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। श्रोताओं, ये थी कुछ बातें ईद उल अजहा से संबंधित। आगे बढ़ते हुए अब सुनते हैं रसरंग के अंतर्गत राजीव कुमार सिंह का गाया ये भजन।

0: के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, अब आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1883 में महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और विचारक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। 1959 में दो अमेरिकी बंदरों एवल और बेकर ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की और सुरक्षित लौट आए। 1998 में पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ियों में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। 2008 में नेपाल में 240 साल पुराने राजशाही का आधिकारिक रूप से अंत हुआ। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, अब सुनिए राजीव कुमार सिंह की आवाज में वसीर बद्र के लिखे गीत को।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कथा सागर कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए कहानी नाटक। कहानीकार हैं प्रेमचंद पांडे। आप सुनेंगे इस नाटक को इस अंतराल के बाद।

0: Akashvani at 90.
1: नाटक तो पहले भी खेले जाते थे, आज भी खेले जाते हैं। इलाके के कई गांवों में आज भी उत्साहपूर्वक नाटकों का आयोजन होता है, लेकिन प्राणपुर के नाटक की बात ही कुछ और है। यही कारण है ना कि दिवाली की रात होने वाले इस नाटक को देखने के लिए इलाके के लोग टूट पड़ते हैं। नौकरी या व्यवसाय में बाहर रहने वाले लोग और किसी त्यौहार में घर आ सके या नहीं, लेकिन दिवाली में जरूर घर आते हैं। यह प्राणपुर की पुरानी रवायत है। इस अवसर पर इस गांव में रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की संख्या भी कम नहीं होती। इसी बात को लेकर हरिकिशोर भैया मजाक के रिश्ते में पड़ने वाले संबंधियों से चुटकी लेते हुए कहते हैं, अरे भाई

अब नाटक वाटक खेलना बंद करो, नहीं तो गांव का सारा अनाज तो समझी खा जाएंगे। सुनने वाले खूब हंसते हैं इस पर। उस दिन शाम में चाय पीते हुए किसी प्रसंग में दिवाली की चर्चा हुई तो नंदू ने पूछा, अरे इस साल नाटक नहीं होगा क्या? कुछ चर्चा वर्चा नहीं चल रही है? चाय की प्याली एक ओर सरकाते हुए परमेश्वर ने कहा, होगा क्यों नहीं, करने वाले अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमने अब तक किसी से इसकी चर्चा सुनी नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ। पहले तो महीना भर रिहर्सल चलता था और नाटक होने वाले दिन दोपहर में फाइनल रिहर्सल होता था। तब की बात कुछ और थी, शंकर ने बीच में टोकते हुए कहा, अब जमाना बदला है, अब टीवी वाले युग में नाटकों का शौक कमजोर हुआ है साहब। देखते थे मेला मैदान में बैलगाड़ियों की कतार लग जाती थी, कतार। परमेश्वर ने कहा, अरे भाई तब बैलगाड़ी की कतार होती थी, अब साइकिल स्कूटर और मोटरसाइकिल से मैदान भर जाता है। लेकिन सच पूछो तो प्राणपुर के नाटक का प्राण तो गिरधारी काका ही है। क्या कलाकारी है इनमें, नाटक में प्राण फूंक देते हैं प्राण। इसमें दो राय क्या है, शंकर ने हामी भरते हुए कहा, इतना उत्साह इतना समर्पण भला किसी और में कहा। इतना ही नहीं, कुर्सी से उठकर चौकी की कोने में बैठते हुए धीरो ने धीरे से कहा, टीम के एक एक सदस्य में उत्साह भर देना और अनुशासन के साथ, कभी समझौता नहीं करना उनकी बड़ी विशेषता है। जानते हो वो जिस भूमिका में होते हैं उसकी में जीवंत कर देते हैं, ऐसा जीवंत कि लोगों को हंसाना और रुलाना उनके लिए तो समझो बाएं हाथ का खेल है। और मेकअप, मेकअप तो ऐसा कर दें कि गांव वाले भी पात्रों को पहचानने में मात खा जाते हैं। अरे शंकर क्या कहूँ, तुमको सुनकर हंसी आएगी। क्या हुआ अब बताइए ना, शंकर ने जिज्ञासा प्रकट की। एक बार गिरधारी चाचा के नाटक प्रेम की चर्चा हो रही थी तो चाची ने हंसते हुए बताया था कि उस वर्ष चाचा एक लड़की की भूमिका में मंच पर आए थे। उनका मेकअप और बदली हुई आवाज के कारण खुद चाची भी देर तक उनको नहीं पहचान सके थे। सुनते ही सभी ठठाकर हंस पड़े। उसी रात नंदू खाना खाकर चौकी पर लेटे हुए थे, धीरे धीरे झपकी भी आ रही थी। तब तक सड़क पर तीन चार आदमी की तेज आवाज सुनाई पड़ी। अचानक नींद टूटी, जिज्ञासा से धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ाए तो एक दो आवाज जानी पहचानी भी लगी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? मुकेश हो क्या, क्या बात है? कहते हुए वे सड़क पर आ गए। सड़क पर खड़े तीन चार युवकों में से दो तो तुरंत आगे बढ़ गए। जो युवक वहां खड़े रह गए वे मुकेश और मिथुन थे, दोनों उनके निकट के पड़ोसी। क्या बात है मुकेश, बोलते क्यों नहीं? मुकेश ने कहना शुरू किया, चाचा इस वर्ष दीपावली के नाटक की तैयारी की बैठक थी, आज हम लोग वहीं से आ रहे हैं, दो दिन पहले ही बैठक हुई थी। तो फिर क्या हुआ? नंदू ने जिज्ञासा प्रकट की। नाटक का चयन तो हो गया है, भूमिका भी बढ़ गई, लेकिन लेकिन क्या, साफ साफ बोलो ना, नंदू ने झुंझला कर कहा। मुकेश ने कहा, आज हम लोगों ने पूछा कि इस साल गिरधारी बाबा नाटक में क्यों नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। इस पर परछाई टोल के लड़के गर्म हो गए और कहने लगे कि मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी क्या? ये सुनते ही हम लोग को गुस्सा आ गया, ये तो गिरधारी बाबा का अपमान है ना। बिल्कुल अपमान है, सरासर अपमान है, नंदू ने बल देकर कहा। फिर क्या हुआ, फिर क्या होता, हम लोग भी उठकर बाहर आ गए। हम लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग नाटक में भाग नहीं लेंगे। अच्छा किया, किंचित प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नंदू ने पूछा। फिर कहा, अभी कौन था, किससे बहस हो रही थी तुम दोनों की? वही बछियारी टोल के दो लड़के थे, मुकेश ने छोटा सा उत्तर दिया। क्या कह रहे थे वे दोनों? क्या कहेंगे, कह रहे थे कि नाटक तो होगा ही, कोई भाग ले या नहीं। नंदू पल भर चुप रहे, फिर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी जाओ तुम लोग अपने अपने घर जाओ, झगड़ा झंझट नहीं करना है, मैं सुबह में देखूंगा। मुकेश और मिथुन चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े। इधर नंदू भी आकर बिछावन पर लेटे, लेट तो गए लेकिन मन बहुत खिन्न था, नींद कोसों दूर हो गई थी, मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे, अभी शाम में तो नाटक के संबंध में

0: देर तक बात होती ही रही। वे स्वयं बुदबुदा उठे। जिस नाटक को लेकर इतनी खुशी हो रही थी, गौरा का भाव मन में था, फिर उसी के संबंध में ऐसी बात सुनने को मिल रही है। आखिर गांव में हो क्या रहा है? गिरधारी काका तो बड़े सुलझे दिमाग के आदमी हैं, सच्चे कलाकार हैं, गांव के विकास में उनकी भूमिका भी हमेशा सराहनीय रही है, फिर उन्हीं को नाटक से बाहर करने की बात, यह गांव के लिए सुसंकेत तो नहीं है? फिर गिरधारी काका को कैसा लग रहा होगा अभी? कभी कलाकार का दिल तो बहुत नाजुक होता है। उन्हें किस बात से ठेस लगी कि नाटक के आयोजन से खुद को उन्होंने अलग कर लिया? पर अगले ही पल ख्याल आया, कोई कलाकार घर परिवार दुनिया से रूठ जाए तो रूठ जाए, पर कला से कभी नहीं रूठेगा। कला तो उसकी आत्मा में समाई रहती है, कला तो उसकी जान होती है। अचानक उसके दिमाग में फिर एक बात दोहरी, हो सकता है उन्हें पूछा ही नहीं गया हो इस बार। फिर तुरंत प्रतिप्रश्न भी उभरा, क्यों नहीं पूछा जाएगा उनसे? आदमी तो बड़े अच्छे हैं, बड़े सरल हैं, उन्हें किसी से लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं। फिर न जाने तर्क वितर्क का कितना लंबा सिलसिला नंदू के दिमाग में चल पड़ा, और फिर न जाने कब उनको निंदा गई। सुबह तड़के जगे, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद दरवाजे पर सरहद चला ही रहे थे कि शंकर रोज की तरह सड़क पर टहलने निकले। नजर पड़ते ही नंदू ने आवाज लगाई। आते ही नंदू ने पहला सवाल किया, शंकर ये क्या सुन रहा हूं? क्या? अकचकाकर शंकर ने पूछा। यही, इस साल नाटक में बड़ा विवाद पैदा हो गया है, शायद लोगों ने गिरधारी काका को पूछा ही नहीं, या फिर किन्हीं कारणों से वे स्विंग नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, बात सच, शंकर ने कहा। जानते हैं नंदू भैया, मुझे तो कल रात में इसकी जानकारी मिल गई थी। आखिर बात क्या है? नंदू ने आश्चर्य से पूछा। शंकर संभल कर बैठ गया, फिर कहने लगा, बात यह है, इस साल गिरधारी काका को किसी ने पूछा ही नहीं नाटक में। आखिर क्यों नहीं पूछा? बात यह है कि मेले के आयोजन का भार तो मुखिया जी पर होता है ना, नाटक के भी आयोजन का जिम्मा उन्हीं के पास है। उन्होंने जानबूझकर गिरधारी बाबा को अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। गिरधारी काका ने मुखिया जी का क्या बिगाड़ा है? नंदू ने जोर से पूछा। शंकर ने कहा, सुनने में आता है कि इस वर्ष के चुनाव में गिरधारी काका ने पुराने मुखिया का साथ दिया था। उनके टोले से नए मुखिया जी को कम मत मिले थे। मुखिया जी को शक है यह सब गिरधारी काका के कारण हुआ है। यह सुनते ही नंदू की आंखें लाल हो गईं। वे गुस्से में आकर बोलने लगे, तो इसी बात के लिए लोग इस हद तक उतर जाएंगे? शंकर, ये छोटी बात नहीं है, गांव का आयोजन है, किसी के बेटे बेटी की शादी नहीं है कि किसी को निमंत्रण दिया और किसी को नहीं, पता है तुमको? ऐसा करके गांव में कलह का जहर बोया जा रहा है, गांव की एकता पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। क्षुद्र स्वार्थ की राजनीति ने गांव, समाज और देश को कितना तोड़ा है। फिर इस घटना ने न केवल सामाजिक एकता पर प्रहार किया, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों पर भी आघात किया है। सोचो शंकर, कितनी चोट पहुंचेगी गिरधारी काका जैसे बड़े कलाकार को। इतनी उपेक्षा और अपमान का दंश एक सच्चा कलाकार आसानी से नहीं झेल सकता। कहते कहते नंदू का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे पल भर रुके, फिर बोलने लगे, आज गांव, समाज और देश की दुर्गति सिर्फ इसलिए हो रही है कि कोई भय से मुंह खोलना नहीं चाहता। अन्याय सहना भी एक पाप है शंकर, मुझसे तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यह कहते हुए नंदू उठे और यह कहते हुए चल पड़े। शंकर, अच्छा हुआ कि कुछ लड़कों ने नाटक में भाग लेने से मना कर दिया, और अब मैं खुद मुखिया जी से बातें करने जा रहा हूं। वहां खड़े लोग अवाक होकर नंदू को जाते हुए देख रहे थे। पल भर बाद ही शंकर और दूसरे लोग भी नंदू के पीछे पीछे हो लिए।
1: आपने कहानी सुनी, नाटक, कहानीकार थे प्रेमचंद्र पांडे, कथा सागर कार्यक्रम के अंतर्गत। श्रोताओं, अब बारी है फिल्म संगीत की, तो सुनिए फिल्म अंदाज का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या से चलकर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका भागलपुर आने का सही समय सुबह 8:05 है, ये गाड़ी 53 विलंब से भागलपुर पहुंचने की संभावना है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमू, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
6: Nexa.
8: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। विक्रमशिला सेतु, 5 जून से पहले निर्माण पूरा होने का दावा। 2 बेली ब्रिज बना, अब तीसरे की तैयारी, जल्द होगा आवागमन। इग्नू, जून टर्म एंड एग्जाम 1 जून से 21 जुलाई तक।

सिपाही भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी 19,838 अभ्यर्थी सफल। एलिमिनेटर लीग में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 47 रन से जीता राजस्थान फाइनल की ओर कदम। और फ्रेंच ओपन सीनर का क्ले कोर्ट पर 18-0 का रिकॉर्ड। अब सुनिए फिल्म बादल का ये गीत। कविता कृष्णमूर्ति और साथी की आवाजों में गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है अनु मलिक का।

0: Akashwani at 90.
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, खबरनामा हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:48 पर प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में

0: धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में

0: मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and conversions between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report. While

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन अल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकत दारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहाँ हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट के इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को ये इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वो जराइम और मनुष्यात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा ना हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन 1 दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदामात के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेटवा गांव की झील, 9 तामीरशुदा 3 लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और 16 और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे।

0: न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर्स और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कैर्सलेन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी गोकेश को एलरिस फिरोजिया ने शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। प्रगनंदा अब कुल 4.5 पॉइंट्स के साथ नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में दूसरे मकाम पर पहुंच गए हैं और वो सिर्फ फिरोजशाह से पीछे हैं, जो 7.5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। अफ्रीका और अब अखबारात के आईने के साथ है नितिका।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के SIR अमल को दुरुस्त और आईनी करार दिया। मुल्क में शदीद गर्मी के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से मुहतात रहने की अपील से मुतालिक खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, शदीद गर्मी और हीट वेव के दरमियान वजीर आजम की शहरियों से तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आज मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाए जाने से मुतालिक खबर को तमाम अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाई किया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हमवतनों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुल्क में अनाज की पैदावार में रिकॉर्ड तारीखी इजाफा, 3,765.63 लाख टन का तखमीना, इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुकाम से बैन अलाक्वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाल मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। और आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोश व खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं,

हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है
1: नमस्कार ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक में रेलवे विद्युत और सड़क निर्माण से जुड़ी लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत की बुनियादी सुविधाओं की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव से संबंधित बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में चल रहे भूमि सुधार को और विस्तार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम होगा।
3: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें अर्बन इलाके में कैसे सर्वे किया जाना है इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं।
1: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी योजनाओं के लिए रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित कर्मियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों के इंडोर चिकित्सा के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
3: बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्य कर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी।
1: कैबिनेट ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले के लिए राज्य उच्च पथ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस पर 3,740 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम कोसी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए 606 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही तथा अनियमितता बरतने वाले 14 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पत्थरघट, पाटलिपुत्र, खैलाट, बैकुंठपुर, गुरारू, पालीगंज, सुपौल, गोपालपुर, गोपालगंज, एकमा, चंडी, पैरिया और साहेबपुर कमाल प्रखंडों के तत्कालीन अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इन पर आरोप पत्र गठित करने के साथ ही इनके वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है।
4: 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बंद करें अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे चलती रहेगी।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जदयू प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सिविल सर्जन और डीपीएम की समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज सुबह नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी

0: में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची की फसल को व्यापक क्षति हुई है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, सिवान एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: जमुई की एक अदालत ने गढ़ी थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 अन्य दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। इन पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पटना की ATS अदालत ने जाली भारतीय नोट की तस्करी में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में 10,882 युवाओं को नौकरियां मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी चुन्नू लाल यादव को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गया के कुरुआ बाजार में अपराधियों ने एक आभूषण व्यापारी को गोली मारकर 35 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद लूट लिए। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन चौक के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इधर बेगूसराय के कुरहा ढाला के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। कटिहार जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के थूसर पंचायत के चकला पहियार में 3-3 से आतंक फैला रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने मार डाला। तेंदुए के हमले में 3 लोग भी घायल हो गए। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में शानदार 97 रन की पारी खेली। वैभव ने अपनी पारी में 12 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने IPL के एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रैयती भूमि के लिए नई नीति, बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। प्रभात खबर ने लिखा है, CM ने दिया तोहफा, राज्य कर्मियों का अब कैशलेस इलाज होगा। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के

0: फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है एसआईआर कराना निर्वाचन आयोग का अधिकार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है हमारे वैभव सिक्सर किंग, आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं केवटी के पीडीओ के 6 ठिकानों पर ईओयू का छापा। आज अखबार ने लिखा है नए मानक से स्कूलों में होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 110.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म घर का ये गीत सुनिए। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत रचना है राहुल देव बर्मन का।

गैम्बलर फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है नीरज ने और संगीत रचना है ST बर्मन का।

सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार हैं अभिजीत आनंद। इनकी आवाज में सुनिए मीराबाई का ये भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत कलाकार थे अभिजीत आनंद। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आरंभ में सुनिए फिल्म फरार का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: एक नजर फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

AIR at 90. दुल्हन फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700001424।

0: दो पर।
1: डोली फिल्म का गीत सुनिए, आशा भोसले की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत रवि का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: दिल आखिर दिल है, फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे नाटक इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. प्रस्तुत है नाटक खुददार। लेखिका है प्रोफेसर मीना रानी, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।
1: मैडम मैडम, ये जगह खाली है
2: जी?
1: एक्सक्यूज मी, आप बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना?
2: जी, लेकिन लेकिन आपको कैसे पता?
1: मैं विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी में बीटेक फाइनल ईयर कॉमर्स साइंस, ओह सॉरी, कंप्यूटर साइंस।
2: मैं बीसीए फाइनल ईयर में हूँ।
1: बीसीए फाइनल ईयर, आप क्या बेंगलुरु शहर की रहने वाली हैं?
2: जी हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं?
1: एक्चुअली कल मैंने अखबार में आपकी फोटो देखी थी।
2: अच्छा, वो जी, वो कंप्यूटर साइंस में रिसर्च के लिए मुझे कर्नाटक सरकार ने
1: 25 लाख रुपए का अनुदान दिया है ना?
2: जी जी,
1: मैंने पढ़ा था।
2: और एक साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है
1: जी।
2: मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस नए रिसर्च को

0: लेकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। वैसे आप तो बीटेक में है ना?
1: हाँ।
0: तो इसके बाद?
1: बीटेक करने के बाद एमटेक और फिर सोच रहा हूँ पीएचडी कर लूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: अरे देखिए ना, मेरा स्टॉपेज आ गया, बातों ही बातों में कुछ पता भी नहीं चला। आपसे बातें करते करते कैसे समूचा रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, बाय सुरभि।
0: हाँ, एक मिनट, मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं।
1: मेरा नाम मलय है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा
1: ठीक है, बाय
0: बाय।

0: मालिक मालिक मालिक
1: मालिक। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छोटे साहब मलय बाबू की शादी के लिए अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर चौरंगी रोड से सुकोमल दास अपने कुछ परिजन के साथ आ चुके हैं, उन्हें अंदर लेते आऊं
2: क्या? दत्ता बाबू आ गए हैं?
3: ठीक है अजी, सुनती हो?
4: हाँ।
3: अरे दत्ता बाबू आ गए हैं।
4: हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, तुम जाकर उन्हें ले आओ।
1: जी जैसी आज्ञा मालकिन।
5: नमस्कार घोष बाबू, नमस्कार।
3: नमस्कार नमस्कार, आइए आइए।
4: नमस्कार।
3: अपने गरीब खाने में हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब कहिए कैसे आना हुआ?
5: मैं अपनी पुत्री सुशीला का विवाह आपके पुत्र चिरंजीव मल्लय के साथ करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
3: अच्छा अच्छा,
4: आपने की बिजनेस करें?
5: मैडम, चौरंगी रोड में मेरी प्लास्टिक फैक्ट्री है, एक शोरूम भी है। मेरी कोई जमींदारी नहीं है, पैसे से व्यापारी हूँ, जीविका पालन योग्य आमदनी हो जाती है।
4: ओह अच्छा अच्छा, अपनी बेटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
3: हाँ।
5: सुशीला मेरी ज्येष्ठ पुत्री है, 21 वर्ष उम्र है और वह स्नातक कला अंतिम वर्ष की छात्रा है। एक सुघड़ कन्या के उसमें सभी गुण मौजूद हैं। सिलाई कढ़ाई के साथ साथ संगीत में उसकी विशेष रुचि है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ए दत्ता बाबू, मैं राय बहादुर सत्यपाल घोष खानदान से आता हूँ। हमारे परिवार में रिश्ता करने के लिए आपको हमारी शानो शौकत के अनुरूप ही शाही अंदाज में शादी का आयोजन करना होगा।
4: एक कथा बोले दीची दत्ता बाबू, हम घोष खानदान की प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।
3: हा, हा, हा, हा, ऐसा है सुकुमाल बाबू, हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है, कम से कम 300 बारातियों का स्वागत तो करना ही होगा आपको।
5: हाँ हाँ घोष बाबू, खुशी खुशी इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने मेरी बेटी को पसंद किया।
4: दत्ता साहब जरा सुनो तो, आप अपने होने वाले दामाद को क्या उपहार देंगे?
5: जी मैडम, मैं उन्हें कोलकाता में 4 बेडरूम का एक फ्लैट और एक BMW कार तो शौक से दूंगा ही।
4: अरे बाबा, और अपनी बेटी को क्या यूं ही डोली में चढ़ा देंगे शेख?
5: मैडम, बेटी तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है।
4: ना ना ना ना ना, एटा चलबे ना सुकोमल बाबू, बेटी को साक्षात लक्ष्मी सरस्वती कह देने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 25 लाख तो देने ही होंगे, और फिर कन्या के शोभा श्रृंगार के लिए 20 भर सोना तो आप दे ही देंगे ना।
3: सत्यभामा जरा इधर आना तो।
4: की बोल छो?
3: तुम इधर आओ तो।
4: ओह
3: दत्ता बाबू, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं गया और आया। देखो सत्यभामा, सुकोमल दत्ता एक साधारण व्यापारी है, हमारे जैसा जमींदार नहीं। तुम उन्हें जितना धनवान समझती हो शायद वो नहीं है, इसलिए तुम्हें ये लेन देन का बार्गेन अब बंद कर देना चाहिए, समझी? वरना समाज हमारी खिल्ली उड़ाएगा, बोलेगा मुंह मांगा दहेज नहीं मिला इसलिए रिश्ता नहीं बन पाया।
4: बस मुक्ता बंद रखो, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी मना करते हैं। एक बार शादी हो जाने पर ये व्यापारी एक अधेला भी देगा क्या? अरे मेरी माने तो पराया धन जितना मिल सके उससे बटोर लेना चाहिए। उदार बनने वाला तो मूर्ख होता है, किछु ढुकलो माथा ते।
3: देखो देखो देखो सत्यभामा, मैं तुम्हें आगाह कर देता हूँ, मलहे को यदि पता चलेगा कि हमने लड़की वालों से इतना ऐठा है तो वो बेहद नाराज हो जाएगा, समझी?
4: वो आप मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप उन लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
3: अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अब चलो।
4: हाँ तो दत्ता बाबू, क्या सोचा है आपने?
5: मैडम, गहने जेवरात तो हम घर से किसी तरह पूरा कर लेंगे, पर नगद राशि जुटाना मुश्किल है। इस बाबत मेरा निवेदन है कि शादी की तिथि 3 महीने आगे कर दिया जाए, ताकि बैंक से कर्ज निकाल सकें।
3: सुकोमल बाबू, देखिए आप घबराइए नहीं, पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें।
4: दत्ता साहब, आपको तो पता है कि हमारी कोई बेटी नहीं है।
3: जी जी,
4: और आपकी बेटी हमारी बहू और बेटी दोनों हो जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है तस्वीर में, नाम के अनुसार ही है, बहुत सुशील। ईश्वर की दया दृष्टि रही तो वो शीघ्र ही हमारी सौभाग्यवती बहू बन जाएगी। क्यों जी?
3: बिल्कुल हाँ।
5: हो शाओ
3: जी,
5: कुछ सामग्री सगुन के तौर पर लाया था, ग्रहण किया जाए।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं,
4: अरे इसकी क्या जरूरत है। अच्छा वो वैसे सुकोमल बाबू, वो बात याद रखिएगा, आप तो समझदार हैं। क्यों जी?
5: अच्छा गोश्राव, अब हम लोग चलते हैं, विदा कीजिए।
3: नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

0: हाय मलय, कैसे हैं आप?
1: हाय, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे आपकी कही बात सच हो गई।
1: कौन सी बात?
0: वही, शायद हमारी अगली मुलाकात बस में ही होगी।
1: जी हाँ, बिल्कुल, वो तो सही हो गई।
0: अच्छा, वैसे उस दिन न्यूज़पेपर में मेरी फोटो छपी थी।
1: हाँ,
0: और आज आपकी छपी है, क्या बात है।
1: जी, आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ।
0: यूनिवर्सिटी के टॉपर होने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाई।
1: शुक्रिया।
0: अच्छा मलय, हम दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: कितना अच्छा होता ना कि हम दोनों एक साथ रिसर्च करते।
1: इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। जानती हो सुरभि, मैं भी उस मुलाकात के बाद से यही सोच रहा था, लेकिन लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं तुम, ओ सॉरी, आप पसंद करेंगी या नहीं, लेकिन लेकिन आप मुझसे ज्यादा साहसी और बहादुर निकली। अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ काम करके मुझे भी कोई ना कोई छोटा बड़ा सम्मान मिल जाएगा।
0: नहीं नहीं, अरे मलय, आपका स्टॉपेज आ गया।
1: हाँ, स्टॉपेज तो आ गया, लेकिन

0: मैं यहाँ नहीं उतरूंगा आज।
1: क्यों?
0: मुझे आगे जाना है।
1: आगे जाना है?
0: हाँ, मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, आपकी यूनिवर्सिटी जाऊंगा।
1: मेरी यूनिवर्सिटी और आप?
0: क्यों, आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे कोई काम नहीं हो सकता क्या?
1: हाँ क्यों नहीं, आपको मेरी यूनिवर्सिटी में काम हो सकता है, मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में काम हो सकता है।
0: अरे वाह, बिल्कुल। और अगर आपको मेरी यूनिवर्सिटी में काम होगा तो आपका वेलकम है, आप कभी भी आ जाइए।
1: तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी आपका वेलकम है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे देखिए, हमारा स्टॉपेज आ गया, चलिए उतरते हैं।
0: हाँ हाँ, चलिए आइए।
1: वैसे मलय, मेरी यूनिवर्सिटी में आपको काम है, अगर आप कहें तो शायद मैं मदद कुछ करूं।
0: अरे अरे, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, वैसे मुझे कोई काम तो था नहीं, दरअसल मैं आपके साथ समय बिताना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ तक चला आया।
1: अच्छा, तो ये बात थी। अच्छा तो चलिए, यूनिवर्सिटी टॉपर होने की खुशी में आपको मेरी तरफ से ट्रीट।
0: अरे आप क्यों ट्रीट देंगी, ट्रीट तो मैं दूंगा।
1: नहीं नहीं, आप मेरी यूनिवर्सिटी आया है तो मेरी ओर से ट्रीट।
0: अरे उससे क्या हुआ, अब ट्रीट तो मैं दूंगा।
1: नहीं नहीं, ट्रीट तो मैं दूंगी।
0: अरे प्लीज मेरी बात मान जाइए,
1: मेरा यूनिवर्सिटी मेरा ट्रीट।
0: चलिए अब आपकी जैसी इच्छा। फिर अगले दिन लेकिन मैं ट्रीट दूंगा।
1: अच्छा बाबा, दे दीजिएगा।

0: सुरभि, तुम जब कभी शादी करने का फैसला करोगी, इस नाचीज के बारे में भी गौर फरमाओगी।
1: क्या?
0: हाँ, तुम जब कभी शादी करने का फैसला करो तो इस नाचीज को जरूर याद रखना।
1: हे भगवान, ऐसे भी कोई प्रपोज करता है?
0: तो क्या तुम्हारी हाँ है? क्या तुम उससे शादी करने को तैयार हो? बोलो सुरभि, क्या तुम उसे शादी करने को तैयार हो?
1: हाँ बाबा, तैयार हूँ।

0: यही वक्त आ गया है।
1: ये कैसी असामयिक और अप्रत्याशित बातें आप लोग कर रहे हैं। अरे शादी क्या महज गुड्डा गुड्डी का खेल है, जिसे चट तय कर लो और पट पूरा कर लो। मैं यहां शादी करने नहीं आया हूं, इसलिए इस अध्याय को यहीं बंद कर दें तो अच्छा है।
2: मौलाए, माता पिता को अपनी संतान की खुशी का हमेशा ध्यान रहता है, और ये रिश्ता तो अब तय हो गया। माँ बाप की खुशी और घोष खानदान की मर्यादा के लिए तुम शादी कर लो।
1: माँ, शादी रुपये पैसे या सोना चांदी के लिए नहीं होती है। कृपया अपनी बीमार और रूढ़िवादी जंग लगी सोच को बदलें, प्लीज।
2: तो क्या तुम हमारी बेइज्जती कराओगे? लड़की वालों ने 5 लाख रुपए और सोने के सिक्के शगुन के रूप में दिए हैं। इसे टालो नहीं बेटा, तुम इस तरह बेरुखी भरा सलूक हमारे साथ करोगे, हमने तो सोचा भी नहीं था।
1: ओहो, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं अभी बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ।
3: मलय, बेटा बेटा, भगवान के लिए अपनी माँ का दिल मत दुखाओ, बात मान लो। शादी की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है बेटे, ये शादी नहीं होगी तो समाज में हमारी बदनामी होगी और लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे कि बेटे ने माँ बाप की बातों को ठुकरा दिया।
1: हरगिज नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। आप लोगों ने मुझे एक बिकाऊ बैल समझ लिया, जो मोटी रकम और सोना चांदी दे दे उसकी बेटी को मेरे गले बांध दो। पिताजी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपने जीवन का फैसला मैं खुद करूंगा। माँ, आप तो बेटे की खुशी की दुहाई देती थी ना, सुबह नाश्ते में आपने मुझसे मेरी पसंद पूछा था, लेकिन कभी शादी के बारे में मुझसे मेरी पसंद पूछना उचित नहीं समझा।
2: नहीं बेटा, तुम इस तरह हमें निराश नहीं कर सकते। बताओ बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुमने किसी दूसरी लड़की को पसंद किया है?
1: माँ, मैं तो तुम्हें यही खुशखबरी देने आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मौका कहाँ दिया।
3: कहाँ की लड़की है बेटा, क्या करती है, जरा विस्तार से बताओ।
1: जानना चाहते हैं? सुरभी नाम है उसका, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में BCA की छात्रा है, कंप्यूटर साइंस में अनोखा शोध किया है उसने। वो एक खुद्दार और स्वाभिमानी लड़की है, लेकिन मैं जानता हूं माँ को तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो दूसरे बिरादरी की है और साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आती है।
2: कि उन्नो जातेर में मौलाए, मैं गैर बिरादरी की लड़की स्वीकार नहीं कर सकती, ये शादी नहीं होगी ना, मैं नहीं होने दूंगी।
1: तो ठीक है माँ, मैं वापस जा रहा हूं, जब कभी मेरी याद आए तो बुला लीजिएगा। और सुन लीजिए, मैं या तो शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो सिर्फ सुरभि से।

0: सुरभि ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। हाँ, सिर्फ सुरभि।
1: मोले, मोले रुको, मोले।
2: रुक जाओ बेटा,

0: दीदी तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जीजा जी भी बीमार होकर खाट पकड़ लिए। अब भी वक्त है। दीदी दीदी मेरी मानो तो मलय की शादी उसके पसंद की लड़की के साथ धूमधाम से करा दो। यदि यदि तुम्हारा बेटा खुश रहेगा ना तो तुम्हारी खुशी भी वापस लौट जाएगी दीदी।
1: सत्यभामा, परिमल जी ठीक बोल रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं, तुम दान दहेज की लोभी नहीं हो। तुम बस हमारी झूठी प्रतिष्ठा को ढो रही हो, जिसकी वजह शायद मैं हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने खानदान के बारे में बहुत बधा चढ़ा कर बताया। देखो सत्यभामा, देखो ईश्वर की दया से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। और आज इस बदलते युग में अगर हम नहीं बदले तो फिर हम अपने बच्चों को बदलने के लिए कैसे बोले, बताओ सत्यभामा, बताओ। वैसे परिमल बाबू सही बोल रहे हैं, सत्यभामा बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
0: हाँ दीदी, आज के समाज में शादी सिर्फ दो परिवारों के खानदानी प्रतिष्ठा का सूचक नहीं है, अपितु ये लड़के और लड़की के बीच की मानसिक स्थिति को भी बयां करता है। दीदी उन्हें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन अगर वे कोई निर्णय लेते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके निर्णय को परखने के बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए। दीदी
2: परिमल, मुझसे बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है परिमल। ये सब मैंने मलय से बिछुड़ कर जाना, अब मैं तुम पर छोड़ देती हूँ। लालच ने मेरा विवेक छीन लिया था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई फ्लैट, BMW गाड़ी, नगद, सोना, चांदी, कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरा बेटा वापस करा दो। मुझे केवल मेरा बेटा वापस करा दो।
0: चुप रहो दीदी, चुप रहो, मैं अभी मलय से बात करता हूँ। दीदी
3: हेलो
0: मलय बेटा।
3: हाँ मामा जी, प्रणाम।
0: खुश रहो, कैसे हो बेटा?
3: ठीक हूँ मामा जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: बेटा तुम जब से गए हो तुमने कभी गौर किया तुमसे गलती हो गई है? माँ बाप का तुमने कितना दिल दुखाया है बेटा।
3: हाँ मामा जी,
0: तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
3: मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मामा जी, मुझे वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो सुरभि ने भी कहा कि मुझे कोई भी फैसला माँ बाप को ध्यान में

0: कर लेना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मामा जी, मैं तो खुद ही फोन करने वाला था। आप क्या माँ बाबूजी के पास हैं?
1: हाँ बेटा, लो माँ से बात करो। लो दीदी, बात करो मले से।
0: हाँ माँ से बात कराइए।
2: हेलो हेलो मौलाई बेटा।
0: प्रणाम माँ।
2: कैसे हो बेटा?
0: ठीक हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ।
2: नहीं नहीं, तुमने तो कोई गलती नहीं की, सारी गलती मेरी है।
0: क्या कहती हो माँ?
2: हाँ हाँ बेटा, मैंने मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा खानदान की परंपरा की बात तुझसे करती रही।
0: छोड़ो ना बाबा।
2: पर तुम्हारे अंदर के इस संस्कार को नहीं देख पाई।
0: रहने दो माँ।
2: नहीं नहीं, हमने जो गलती की है हमें उसे सुधारना है। लो बाबा से बात करो। बाबा बाबा यहीं पर हैं, बाबा से बात करो।
0: बाबा बाबा प्रणाम बाबा।
3: मले मले बेटा बेटा, तू तू चिंता नहीं कर, सब सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आ रहे हैं बेटा, और वहाँ सुरभि के पिता माता जी से मिलकर सारी बातों को ठीक कर देंगे बेटा। तुम चिंता मत कर, हम लोग आ रहे हैं बेटा, तू चिंता मत कर।
0: ठीक है।
4: आप सुन रहे थे नाटक खुददार, लेखिका थी प्रोफेसर मीना रानी और प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

अरमान खान और विशाल मिश्रा को आपने सुना फिल्म हक में। गीतकार कौशल किशोर, संगीतकार थे विशाल मिश्रा। और अब सुनिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी को। फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अमिताभ भट्टाचार्य का गीत, संगीतकार हैं प्रीतम।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

Akashvani at 90. अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सईद कादरी का लिखा गीत, मिथुन का संगीत, आवाजें नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की। फिल्म है गदर 2। आइए सुनते हैं।

नई फिल्मों से कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
8: 8700001-4242।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

संदेशों के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है जरा हटके जरा बचके। इस गीत के लिए आवाजें दी हैं वरुण जैन, सचिन जिगर, शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी ने। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर।

ऋचा शर्मा और जावेद अली को आप सुन रहे थे फिल्म मैदान में। मनोज मुंतशिर का गीत, संगीतकार थे एआर रहमान। और इसके साथ ही नई फिल्मों से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, स्वागत है आपका गुलदस्ता कार्यक्रम में।

गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को अणिमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की ये महफिल एक ऐसी आवाज के नाम है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती है। एक ऐसी आवाज जिसमें पंजाब के मिट्टी की खुशबू है, लोक गीतों की सादगी है और फिल्मी संगीत की चमक दमक भी है।

दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम जी को, क्योंकि कुछ आवाज़ें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि हर बीतते साल के साथ और भी चमकदार, गूंजदार।

हो जाती है। दोस्तों, जब हम पुराने हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बातें करते हैं तो एक नाम सबसे पहले उभर कर सामने आता है और वो नाम है शमशाद बेगम जी का। वो दौर जब प्लेबैक सिंगिंग अपनी पहचान बना रही थी और उस पहचान को अपनी दमदार, खुली और खनकती आवाज से आकार देने वाली शख्सियत थी शमशाद बेगम जी। 1919 में पंजाब के अमृतसर में जन्मी शमशाद बेगम जी ने संगीत की दुनिया में कदम ऐसे रखा जैसे कोई नदी अपने रास्ते खुद बनाती चली जाए। उनकी आवाज़ में ना कोई बनावट थी, ना कोई कृत्रिम मिठास, बल्कि एक सच्चाई थी, एक अपनापन था। उनकी आवाज़ इतनी अलग और इतनी दमदार थी कि जब पहली बार लोगों ने उन्हें सुना तो बस सुनते ही रह गए। आइए सुनते हैं आज का पहला गीत।

आर पार फिल्म का गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का गीत था, संगीतकार थे ओपी नैयर। तो दोस्तों, शमशाद बेगम की जो ये आवाज़ आपने सुनी और ये गीत आपने सुना, तो दोस्तों ये वो समय था जब न रिकॉर्डिंग की जो अभी जो सुविधाएं हैं या टेक्निक है और डिजिटल सुधार जो आजकल होता, वो कुछ भी उस समय नहीं था। लेकिन शमशाद बेगम जी की आवाज़ इतनी सटीक और मज़बूत थी कि एक ही टेक में गाने रिकॉर्ड हो जाते थे। उन्होंने नौशाद, ओपी नैयर और सी रामचंद्र जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया और हर बार अपनी आवाज़ से हर गाने को अमर कर दिया। कभी यार कभी पार, लगा तीरे नज़र, ये तो गीत अभी आपने सुना और वो गीत याद है ना, लेके पहला पहला प्यार। तो इन गीतों की खनक आज भी वैसी ही है दोस्तों जैसी पहली बार सुनाई दी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन गीतों में सिर्फ सुर नहीं।

नहीं है, बल्कि एक जमाने की मुस्कान, एक दौर की मासूमियत और दिल की सच्चाई भी बसती है। तो क्यों ना सुन ले एक और बहुत प्यारा सा गीत फिल्म बहार का। गायिका तो शमशाद बेगम ही हैं, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं ST वर्मन। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा, थोड़ा अनसुना सा गीत।

शमशाद बेगम जी की बातें हम कर रहे हैं आज के गुलदस्ता में और उनके गीत हम सुन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले भी कहा कि उस समय ना वैसी टेक्निक थी ना ही डिजिटल जो सुविधाएं हैं आवाज़ को सही करने का, लेकिन शमशाद बेगम जी की आवाज़ इतनी अच्छी थी और इतनी मजबूत थी कि एक ही टेक में वो हर गाने को रिकॉर्ड कर लेती थी। अभी तो हर टुकड़े को रिकॉर्ड किया जाता है ना, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। और सोचिए, उस दौर में एक गायिका इतनी मजबूती से फिल्म जगत में वो खड़ी थी कि हर उभरते हुए और हर मजबूत संगीत निर्देशक के साथ वो धड़ल्ले से काम कर रही थी। तो दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब नई आवाज़ें उभरने लगीं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसी गायिकाओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन शमशाद बेगम जी की आवाज़ की जो अलग पहचान थी ना, वो कब

भी कम नहीं हुई। उनकी गायकी में एक देसीपन था, एक खुलापन था, मिट्टी की सुंदर खुशबू थी जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। लेकिन दोस्तों, सन 2013 में शमशाद बेगम जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन क्या सच में वो चली गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलाकार कभी नहीं जाते, वो अपनी कला में जिंदा रहते हैं। आज भी जब कहीं रेडियो पर उनका कोई गीत बजता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं पास बैठी हों, मुस्कुरा रही हों और अपने सुरों से वो हमें छू रही हूँ। तो क्यों ना इस बीच एक और उनका गीत सुन लें। फिल्म CID से हमने इसे लिया है और गीतकार हैं इसके मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार OP नैयर।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

पतंगा फिल्म का गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम और उनके साथ आवाज थी चितलकर की। राजेंद्र कृष्ण का गीत था और संगीतकार थे सी रामचंद्र। तो दोस्तों, एक साधारण परिवार में जन्मी इस बच्ची ने, यानी हम बातें कर रहे हैं ना शमशाद बेगम जी की, तो शमशाद बेगम जी ने जब वो बच्ची थी तो उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी आवाज़ एक दिन पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन जाएगी। पता है, बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था, लेकिन उस समय लड़कियों का गाना समाज में आसान नहीं था। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक समय ऐसा जब मंच पर आना भी एक चुनौती थी। उस दौर में शमशाद बेगम जी ने न सिर्फ गाना शुरू किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उनके पिता शुरू में इसके खिलाफ थे, लेकिन जब उनकी आवाज़ की कशिश सबके दिलों तक पहुंचने लगी तो उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा हो गया। उनका पहला बड़ा पड़ाव था लाहौर रेडियो स्टेशन, जहां उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ को हवा के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। और दोस्तों पता है, वो आवाज़ जब रेडियो पर गूंजी तो सुनने वालों ने महसूस किया कि हाँ, ये कुछ अलग सी आवाज़ है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं सुना गया। और फिर आया फिल्मी दुनिया का सफ़र, जहाँ उन्होंने अपने सुरों से इतिहास रच दिया। नौशाद जी ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़े पैमाने पर उनके गीतों को उन्होंने मौका दिया। फिल्मों में उनके गीतों ने जैसे जादू कर दिया। दर्द, मेला, आन, बाबुल, हर फिल्म में उनकी आवाज़ एक अलग ही रंग भर देती थी। और फिर आई जोड़ी उनकी ओपी नैयर साहब के साथ, और ये जोड़ी तो जैसे अमर हो गई। कभी आर कभी पार ये गीत आपने सुना। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस दौर की चंचलता, उस दौर की मस्ती और जीवन की जो हल्की फुल्की मुस्कान है ना, उसका प्रतीक बनी गाना। और लेके पहला पहला प्यार, तो इस गीत में जो मासूमियत है वो आज के समय में शायद कहीं खो सी गई है। सैया दिल में आना रे, ये गीत भी जो है ना, इस गीत की खनक आज भी हर दिल को झूमने पर मजबूर कर देती है। हमने पहले भी ये आपसे कहा कि शमशाद बेगम जी की आवाज़ की सबसे बड़ी जो खासियत थी ना, उसमें वो है कि उसमें कोई बनावट नहीं थी। वो आवाज़ सीधा दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती थी। उनकी गायकी में लोक गीतों की सादगी थी और शास्त्रीय संगीत की मजबूती भी थी। तो एक और गीत सुन लेते हैं, बड़ा प्यारा सा, जो मुझे तो बहुत पसंद है। वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रही है, मदर इंडिया फिल्म का गीत है और इसमें शमशाद बेगम जी के साथ आवाज़ दिया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। शकील बदाउनी का गीत है और संगीतकार हैं नौशाद। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रही।

शमशाद बेगम जी हमेशा सादगी में रहीं, उन्होंने कभी दिखावे को महत्व नहीं दिया। वो कैमरे से दूर रहीं और सिर्फ अपनी आवाज़ को ही अपनी पहचान बनाया। आज के दौर में जब कलाकार अपनी छवि बनाने में लगे रहते हैं, वहाँ शमशाद बेगम ने साबित किया कि अगर आवाज़ में दम हो तो चेहरा मायने नहीं रखता। 2013 में दोस्तों जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो ऐसा लगा कि जैसे एक पूरा युग ही विदा हो गया। लेकिन हमने पहले भी कहा ना कि सुर कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो हवा में घुल जाते हैं और हर उस दिल में बस जाते हैं जो उन्हें सुनता है। आवाज़ें सिर्फ गूंज नहीं होती, वो एहसास होती हैं, यादें होती हैं और कभी कभी पूरी एक कहानी होती हैं। शमशाद बेगम जी की आवाज़ भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें संघर्ष है, सफलता है और सबसे बढ़कर सच्चाई है। तो आइए दोस्तों, आज की महफिल में हम उनके गीतों के साथ, उनकी यादों के साथ उस सुनहरे दौर को फिर से जी लें और दिल से कहें शुक्रिया शमशाद बेगम जी हमें इतनी खूबसूरत आवाज़ देने के लिए। आपकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी हमारे दिलों में, हमारी यादों में और इस रेडियो की फिजाओं में। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त अणिमा को दीजिए विदा। अगले किसी कार्यक्रम में हम फिर साथ होंगे कुछ और गीतों के साथ, कुछ और बातों के साथ। तब तक नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

नारी लोग सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नारी लोग कार्यक्रम में। बहनों, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं और उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, साथ ही उनकी मस्ती भी। कोई नाना नानी के घर में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं तो कोई विभिन्न शहरों या पर्यटक स्थलों में घूमकर उसका आनंद उठा रहे हैं। कोई शहर में रहकर ही अलग अलग तरह की गतिविधियों में भाग लेकर अपनी छुट्टियों को यादगार बना रहे हैं। बहनों, छुट्टी बिताने का तरीका चाहे कोई भी हो, हमें हमारे बच्चों का ख्याल तो रखना ही होगा। गर्मी में थकावट से बचने के लिए हमें उनको धीरे धीरे मौसम के अनुरूप ढालना होगा, साथ ही उन्हें सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे यदि हमारे बच्चे साइकिलिंग करते हैं तो उस समय उन्हें हेलमेट पहनाना, पानी में रहते समय लाइफ जैकेट पहनाना, बाहर समय बिताते समय सनस्क्रीन और मच्छर को दूर रखने के उपाय करने चाहिए। ये कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम इस प्रतिकूल मौसम को उनकी छुट्टियों का बाधक बनने से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भीषण गर्मी से बचाते हुए उनकी ऊर्जा का सही उपयोग करने में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए विभिन्न तरह के तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, ORS आदि देते रहना चाहिए, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी न हो। हल्के और सुपाच्य भोजन देने चाहिए, जैसे मौसमी फल, तरबूज, खीरा

0: आदि जरूर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हरी सब्जियां का भी उपयोग करें। अधिक तला हुआ या बासी भोजन या फिर बाहर का अस्वच्छ भोजन उन्हें नहीं देना चाहिए। प्रयास रहना चाहिए कि दोपहर के समय यानी दोपहर से 12 से शाम 4 बजे तक बच्चों को बाहर धूप में खेलने से रोकना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो उन्हें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनाने चाहिए। टोपी और चश्मे का उपयोग करना चाहिए। मनु छुट्टियों के दौरान स्क्रीन टाइम सीमित हो और अन्य उपयोगी गतिविधियां सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए केवल आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, आनंद लेने और व्यक्तित्व विकास का अवसर भी होता है। इससे उचित देखभाल, संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और अच्छे संस्कारों के माध्यम से हम अपने बच्चों की छुट्टियों को सुरक्षित, उपयोगी और यादगार बना सकते हैं। अभी चर्चा को यहीं विराम देते हैं बहनों और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: AIR at 90.
1: अंतराल के बाद बहनों अब आइए सुनते हैं पल्लवी कौशिक से काव्य पाठ।
2: कविता का शीर्षक है प्रकृति की हरियाली। ये प्रकृति की हरियाली, ये नदियों का कलकल, ये चिड़ियों का कलरव, ये सूरज का उगना, कितनी सुंदर है सृष्टि की ये अनुपम छटाएँ। कभी उमरते बादल, कभी काली घटाएँ। जितनी भी निरखूँ उतनी ही डूबूँ, जितनी भी निरखूँ उतनी ही डूबूँ, देख देख कर डूबती ही जाऊँ। ईश्वर ने रचा सुंदर प्रकृति, पर मानव क्या कर रहे हैं, दोहन शोषण खंडित विखंडित। इस सुंदरता को शायद प्रकृति इसीलिए ऊब कर करती है उत्पात। कभी डोलती धरती, कभी सुनामी का आघात, कभी डोलती धरती, कभी सुनामी का आघात, कभी महामारी की मार, कभी सूर्य की ताप की प्रचंडता, कभी बादल का फटना, कभी बाढ़ की प्रलयंकारिता। किस तरह बचोगे प्राणी प्रकृति को सताकर, किस तरह बचोगे प्राणी प्रकृति को सताकर। माँ पार्वती का बनना पड़ेगा कोप भाजन, करो आराधना माँ की चाहे प्रकृति रूप, चाहे माँ गंगा का स्वरूप। करो आराधना माँ की चाहे प्रकृति का रूप, चाहे माँ गंगा का स्वरूप। वही करती है पालन तो वही संहार भी करती है, वही करती है पालन तो वही संहार भी करती है, वही संवारती है वही सुधारती है, वही संवारती है वही सुधारती है। इस कविता का शीर्षक है छोटी समझने की भूल। किसी भी चीज़ को छोटी समझने की भूल नादानी है, किसी भी चीज़ को छोटी समझने की भूल नादानी है, सबके पास ईश्वर की मेहरबानी है। किसी के पास दौलत है तो चैन से नींद नहीं आती, किसी के पास दौलत है तो चैन से नींद नहीं आती, कोई मजदूरी करके भी सुकून से सोता है। कोई बहुत खूबसूरत है तो मधुरवाणी नहीं होती, किसी बदसूरत को भी ज़िंदगी में इज्जत मिलती है। कोई बहुत बड़ा लेखक होकर भी गुमनामी में खो जाता है, कोई बहुत बड़ा लेखक होकर भी गुमनामी में खो जाता है, कोई छोटी छोटी बिंदु पर लिखकर इतिहास रचाता है। जहाँ सुई की दरकार है तलवार वहाँ बेकार है, जहाँ सुई की दरकार है तलवार वहाँ बेकार है, जहाँ कलम से काम चले जवान वहाँ लाचार है, जहाँ कलम से काम चले जवान वहाँ लाचार है। कोई झूठी प्रशंसा से खुश होकर दौलत लुटाता है, कोई झूठी प्रशंसा से खुश होकर दौलत लुटाता है, कोई आलोचना सुनकर भी नहीं घबराता है, कोई ऊंचे ऊंचे मकान में खुशी और दंभ से पागल हो जाता है, कोई ऊंचे ऊंचे मकान में खुशी और दंभ से पागल हो जाता है, कोई छोटी छोटी खुशी में ही इतराता है। फर्क सिर्फ अपनी अपनी सोच का है, फर्क सिर्फ अपनी अपनी सोच का है। इस कविता का शीर्षक है धर्म और संस्कृति। बचा लो अपनी धर्म और संस्कृति को अब भी बचा लो, बचा लो अपनी धर्म और संस्कृति को अब भी बचा लो। अपनी सुंदर ये प्रकृति, ये धरती, ये अंबर, ये झरना, ये पर्वत अब भी बचा लो। ये नदियों का कलकल बचा लो, पक्षी का कलरव बचा लो, जीव जंतु और जंगल, प्रकृति ही देगी प्रकृति ही करेगी तुम्हारी सुरक्षा अब भी बचा लो। वो प्रेम की अमर कहानी होती थी कैसी मीरा दीवानी, बता दो आने वाली पीढ़ी को बता दो, वेद उपनिषद ये गीता पुराण, ये रामचरितमानस महाभारत महाकाव्य। हुआ क्या था ये अपना इतिहास, हुआ क्या था ये अपना इतिहास। बचा लो प्रकृति की मार से बचा लो ये गंगा, बचा लो ये यमुना, बचा लो ये गंगा, बचा लो ये यमुना, बचा लो ये मंदिर पुराना, ये अपनी धरोहर है अपना खजाना। बचा लो ये लैला मजनू की कहानी, बचा लो ये लैला मजनू की कहानी, संपूर्ण विश्व को बचा लो, करो सत्कर्म सद्धर्म बचा लो, करो सत्कर्म सद्धर्म बचा लो। बचेगी प्रकृति तो बचोगे तुम भी, बचेगी प्रकृति तो बचोगे तुम भी। करो प्रेम प्रकृति से माँ समझकर बचा लो, करो प्रेम प्रकृति से माँ समझकर बचा लो। अब एक गज़ल। जब से मिले तुम मुस्कुराने लगी जिंदगी, जब से मिले तुम मुस्कुराने लगी जिंदगी, गम को भी गले से लगाने लगी जिंदगी। मेरे हृदय सिंधु में तेरा रूप ऐसा खिला, मेरे हृदय सिंधु में तेरा रूप ऐसा खिला, चांदनी सी खिलखिलाने लगी जिंदगी, चांदनी सी खिलखिलाने लगी जिंदगी। देखा जिस दिन से मैंने नज़र भर तुम्हें, देखा जिस दिन से मैंने नज़र भर तुम्हें, एक तरन्नुम सी गुनगुनाने लगी जिंदगी, एक तरन्नुम सी गुनगुनाने लगी जिंदगी। तेरे अधरों ने जब मेरी अधरों को छुआ, तेरे अधरों ने जब मेरी अधरों को छुआ, प्रीत की गीत सुन गुनगुनाने लगी जिंदगी, प्रीत की गीत सुन मुस्कुराने लगी जिंदगी। पाकर अस्पर्श तेरा तन मन झंकृत हुआ, पाकर अस्पर्श तेरा तन मन झंकृत हुआ, रोम रोम में उमंग जगाने लगी जिंदगी। आकर तेरे आगोश में मन को सुकून जो मिला, आकर तेरे आगोश में मन को सुकून जो मिला, रुत मिलन की पाकर मचलने लगी जिंदगी। रूह से रूह का मिलन हुआ हमारा तुम्हारा, रूह से रूह का मिलन हुआ हमारा तुम्हारा, रूप ऐसा खिला महकने लगी जिंदगी, रूप ऐसा खिला महकने लगी जिंदगी। लवी के दिल में है साथी बसेरा तेरा, लवी के दिल में है साथी बसेरा तेरा, साथ पाकर तेरा मुझे भाने लगी जिंदगी, साथ पाकर तेरा मुझे भाने लगी जिंदगी। अब एक और गज़ल। दर्द अपना किसी को बताते नहीं, दर्द अपना किसी को बताते नहीं, है मोहब्बत तो फिर क्यों जताते नहीं। दर्द अपना किसी को बताते नहीं, है मोहब्बत तो फिर क्यों जताते नहीं, प्यार में

ज़रूरी है इजहार भी, छिपे क्यों हो सामने मेरे आते नहीं। प्यार में तो ज़रूरी है इजहार भी, छिपे क्यों हो सामने मेरे आते नहीं। माना कि प्यार में बहुत दर्द व गम है, माना कि प्यार में बहुत दर्द व गम है, जख्म अपना किसी को दिखाते नहीं, जख्म अपना किसी को दिखाते नहीं। दिल देकर दर्द से ही तो सौदा किया, दिल देकर दर्द से ही तो सौदा किया, आँख अशकों से यूं हम

0: यार को भुलाते नहीं। एक और गजल, जब प्यासों का जिक्र छिरा तो तुमने सावन लिख डाला, जब प्यासों का जिक्र छिरा तो तुमने सावन लिख डाला, खुशबू ने जब अपना घर पूछा मैंने चंदन लिख डाला, खुशबू ने जब अपना घर पूछा मैंने चंदन लिख डाला, क्या क्या वैभव चाह रहे थे सब अपने घर आंगन में, क्या क्या वैभव चाह रहे थे सब अपने घर आंगन में, तुलसी की बारी पर मैंने अपना आंगन लिख डाला, तुलसी की बारी पर मैंने अपना आंगन लिख डाला। सागर सहरा और गगन की गहराई की बातें थीं, सागर सहरा और गगन की गहराई की बातें थीं, जिसमें सब आ सकते हैं बस अपना मन लिख डाला, जिसमें सब आ सकते हैं बस अपना मन लिख डाला। ऐसा भी कुछ दुनिया में है जिसका मोल चुकाए कौन, ऐसा भी कुछ इस दुनिया में है जिसका मोल चुकाए कौन, मुझसे पूछा तो मैंने बस प्रेम रतन धन लिख डाला, मुझसे पूछा तो मैंने बस प्रेम रतन धन लिख डाला। बड़ा बड़ा फिर और बड़ा ब्रह्मांड उसे फिर नापे कौन, बड़ा बड़ा फिर और बड़ा ब्रह्मांड उसे फिर नापे कौन, जगत और जगदीश्वर नापे मैंने तो बामन लिख डाला, जगत और जगदीश्वर नापे मैंने तो बामन लिख डाला। सर्व समर्थ सर्वदा संभव, सर्व समर्थ सर्वदा संभव करता हरता पालनहार, सर्व समर्थ सर्वदा संभव करता हरता पालनहार, इन सब के बदले में मैंने अलख निरंजन लिख डाला, इन सब के बदले में मैंने अलख निरंजन लिख डाला। क्या अभयंकर क्या प्रलयंकर यह त्रैलोक्य अनादि रहा, क्या अभयंकर क्या प्रलयंकर यह त्रैलोक्य अनादि रहा, प्रणवाक्षर की गूंज चिरंतन शिव का नर्तन लिख डाला, प्रणवाक्षर की गूंज चिरंतन शिव का नर्तन लिख डाला।
1: अभी बहनें सुन रही थी काव्य पाठ, कवित्री थी पल्लवी कौशिक। अब आइए बहनों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहनों अब आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित कहानी निराशा का अंत। कहानीकार हैं डॉक्टर आभा कुमारी पूर्वे।
1: सुनीता बार बार सोचती है कि वह अपनी बीती जिंदगी के एक एक अक्षर को भूल जाए, लेकिन जब जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तब तब उसके दिमाग पर उसकी बीती जिंदगी का सारा अंधकार एक बारगी छा जाता है और वह उस अंधेरे में इतना खो जाती है कि घंटे भर लगातार हाथ पांव मारने के बावजूद उस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाती। सुनीता ने इस अंधेरे से बचने के लिए ही प्राइवेट स्कूल में नौकरी पकड़ ली थी। इसके पीछे उसने यह सोचा था कि बच्चों के बीच रहने, पढ़ने और पढ़ाने से उसका मन हल्का हो जाएगा, साथ ही स्कूल के बच्चों में ही अपने बच्चे की झलक देख लेगी और उसका मातृत्व जैसे तैसे पूरा हो जाएगा। इस तरह उसके जीवन का अकेलापन भी अपने आप उससे दूर चला जाएगा। यही सोचकर वह अपनी ससुराल से तंग आकर अपने मायके चली आई थी। फिर अचानक एक दिन माँ बाप के लाख मना करने के बावजूद वह वहाँ से निकलकर शहर के एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। यह स्कूल उस शहर का अच्छा खासा स्कूल था। 300 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे सुनीता को मानते भी बहुत थे। उसके मृदु स्वभाव के कारण छुट्टी होते ही सभी दीदी दीदी कहते उससे लिपट जाते थे। सुनीता उस बच्चे में से किसी एक बच्चे को गोद में उठा लेती और सभी बच्चों के बीच बैठकर देश विदेश की कहानियाँ कहते कहते अचानक ही रुक जाती थी और उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी और सूनापन फैल जाता था। बच्चे उसके चेहरे को देखकर कुछ अजीब असमंजस में पड़ जाते और उनमें से एकाध दीदी की उदासी का कारण भी जानना चाहते, लेकिन सुनीता तो कुछ इस तरह अपनी उदासी में डूबी रहती कि बच्चों का ख्याल ही ना रहता। इस तरह उदासी भरे चेहरे को देखते ही बच्चे एक दूसरे एक एक कर चले जाते थे। जो बच्चे कुछ महीने तक सुनीता के साथ ही खेलने में आनंद का पाते थे, अब उन्हें उनके पास ही जाने में डर लगने लगा था। और सुनीता जो अपने शुरू के दिनों में स्कूल के बच्चों के साथ घुली

मिली रहती थी अब अपनी ही उदासी को लेकर इन बच्चों से कटी कटी सी रहने लगी। किसी यंत्र की तरह वह क्लास जाती थी और खींची खींची सी अपने कार्यों को पूरा कर अपने कमरे में लौट आती थी। आज 6 रोज हो रहे हैं सुनीता स्कूल नहीं गई है। एक आवेदन पत्र भिजवा दिया कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाने के कारण 15 दिनों तक स्कूल ना जा पाएगी। कारण यह है कि 6 दिन पूर्व ही उसे अपने पति का पत्र मिला है। पति के हाथ की लिखी एक लंबी चिट्ठी। वह उस लंबे पत्र को बार बार पढ़ती और गहरी चिंता में डूब जाती है। कई बार उसका मन होता है कि वह पत्र को फाड़ कर फेंक दे और एक पत्र अपने पति के नाम लिख दे। उस पत्र में साफ साफ संबंध विच्छेद की बात हो। अच्छी तरह जानती है कि उसका पति क्या है। पैसे की धाक है, नेता से लेकर दरोगा तक उसके द्वार पर चाय पीने के लिए आते हैं। समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग उसके यहाँ पड़े रहते हैं। मैं यदि किसी के पास जाकर यह कहूँ कि मेरे पति रोज शाम को शराब के नशे में मुझे बहुत पीटते हैं और गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं तो मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। माता पिता से भी यह बताया तो माँ ने भी मुझसे यही कहा, बेटी अब तुम्हारा वही घर तुम्हारे लिए स्वर्ग है। अब तुम्हारे पति जैसे भी हैं तुम्हारे देवता हैं। माँ की यह बात याद आते ही सुनीता का मन कशैला हो गया। तो क्या उसे माँ की बात मान लेनी चाहिए। जिस बात को लेकर वह ससुराल छोड़ महीनों पहले मैके और मायके से स्कूल चली आई उसे भूलकर क्या उसे पैर तले रौंदने के लिए अपने उसी बेरहम पति के साथ जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाए, या सचमुच के नरक को स्वर्ग समझ लेने का भ्रम पाल ले। ऐसा सोचते ही सुनीता का मन अजीब घृणा और गुस्से से भर उठा। कब उसकी मुट्ठी कस गई उसे पता ही नहीं चला। सुनीता ने अपने तने हुए नस को ढीला कर चिट्ठी की पीठ पर आवेग के साथ लिखना शुरू किया। कुर्सी पर खोई खोई सी बैठी सुनीता ने कुछ सोचा और एक झटके के साथ अपनी डायरी से अपने पति के उस पत्र को फिर से निकाल कर पढ़ना शुरू किया। एक एक अक्षर पर आंखें गड़ा गड़ा कर पत्र कुछ इस प्रकार था। सुनीता, तुम अगर यह सोच रही हो मुझसे मुक्त होकर आराम से जिंदगी जी लोगी तो यह सोचना तुम्हारी भूल है। तुम मेरी पत्नी हो इसे सभी मानते हैं और तुम भी जानती हो मैं क्या हूँ क्या करता हूँ। तुम्हें इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं और ना होना चाहिए। तुम अगर यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे अनुसार चलूं तो यह तुम्हारी मूर्खता है। पत्नी पति के अनुसार चले यह बात शास्त्र से लेकर समाज तक कहता है। तुम जिस तरह इस घर से निकल कर चली गई हो उससे मेरे खानदान और परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आ गई है। तुम स्कूल में नौकरी कर रही हो मैंने यह भी पता लगा लिया है। 500 रुपये में तुम्हें पेट भी पालना मुश्किल हो रहा होगा। तुम चुपचाप यहाँ चली आओ। घर में इतनी संपत्ति और अनाज पड़े हैं कि तुम तो क्या तुम्हारे पूरे परिवार का भी भरण पोषण तुम्हारी उम्र भर करता रहूँगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अंत में यह भी जान लो कि तुम स्वयं नहीं आई तो मेरे आदमी तुम्हें ले आएंगे। पत्र की अंतिम पंक्ति को पढ़ते पढ़ते सुनीता सिर से पांव तक सिहर उठी। तो वो इस बात को जानती थी। काशीनाथ, उसने कहा, काशीनाथ तुम मुझे अब भी अपनी पत्नी समझ रहे हो यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस रिश्ते को तो मैं 10-11 माह पूर्व तोड़ ताड़ कर चली आई हूँ। तुम अपनी संपत्ति से अपने परिवार को भी ठीक ठीक चला सको तो एक आदमी होने के नाते मुझे तो खुशी होगी। मैं यह भी जानती हूँ कि नारी अब भी पैसे की संस्कृति के सामने छोटी पड़ जाती है। तुमने मुझे अपने आदमियों से लिवा लाने की बात लिखी है। तुम्हारा दुस्साहस या स्वप्न कभी पूरा भी हो सकेगा मुझे नहीं लगता। जीवन जीने के लिए रुपये की जरूरत तो होगी ही,

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी बहनें सुन रही थीं पूर्व प्रसारित कहानी निराशा का अंत। कहानीकार थीं डॉक्टर आभा कुमारी पूर्वे। इसी के साथ बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक

0: व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से, वो घर में है? तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम, ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ।
8: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
8: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
8: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
7: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
8: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
6: हाँ माँ। और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
1: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
9: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
10: जी साहब, जी साहब।
9: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
10: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ

0: टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज कलाकार हैं गोपाल भगत। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए गोदना गीत।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गोपाल भगत के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक झूमर।
2: निमान लागे हो निमान।

श्रोताओ, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम रांची केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, सीबीएसई 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। रांची पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के सुप्रीमो कमांडर अमृत होरो को लापुंग इलाके से गिरफ्तार किया है। अमृत होरो पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ रांची और खूंटी समेत कई इलाकों में रंगदारी, आगजनी

0: और रेलवे व निर्माण परियोजनाओं में बाधा पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर देर रात कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वर्ष करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई, जिनमें करीब 40 करोड़ स्कैन पेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और छात्र हित सुनिश्चित करना है। अब छात्र अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
1: कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असामाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है। सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है।
0: टाटानगर स्टेशन के दौरे पर पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने आश्वस्त किया कि कोल्हान क्षेत्र में पहले पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही मालगाड़ियों को पास किया जाएगा।
2: वहाँ से एक इशू रेज किया गया था कि गुड्स ट्रेन को चक्रधरपुर डिवीजन में प्राथमिकता दी जा रही है और कोचिंग ट्रेन को रोककर गुड्स ट्रेन को आगे चलाया जा रहा है, तो हमने उनको ये बताया है कि इसके बारे में किसी भी तरह हालत में हम कोचिंग ट्रेन को रोक के गुड्स ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोचिंग ट्रेन जा रही है तो कोचिंग ट्रेन ही आगे जाएगी।
0: वहीं विधायक सरयू राय और रेल यात्री संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी का मुद्दा उठाया। सरयू राय ने कई यात्री ट्रेनों के घंटों देरी से चलने का रिकॉर्ड जीएम के सामने रखा।
3: केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियां हैं ये रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए और ये लेट होने का बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से ना आमदनी होता है किराए, उससे अधिक नुकसान जनता का।
0: झारखंड मंत्रालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

0: राज्य भर में परीक्षाएं 16 जून से 23 जून तक दो पालियों में आयोजित होंगी। परिषद ने मदरसा प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे 8 जून से प्रवेश पत्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। वहीं रोल शीट का वितरण 10 से 12 जून के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक संबंधित मदरसों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने धनबाद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। धनबाद की रमा सिन्हा ने कहा कि इस योजना ने सिर्फ महिलाओं की सेहत और समय को नहीं बचाया है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी हद तक संरक्षण मिला।
1: 10.5 करोड़ महिलाओं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है। आज महिलाएं उस धुएं से बच रही हैं, जो लकड़ियां जलता था, धुआं उठता था, उस धुएं से बच रही हैं। उसके बाद उनका स्वास्थ्य का ख्याल, धुएं से कई प्रकार की बीमारियां होती थी महिलाओं को।
0: ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई मंत्रियों व अन्य ने आज ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, यह त्यौहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बकरीद की बधाई दी। दुमका समेत पूरे संताल परगना में गर्मी बढ़ने के साथ सर्पदंश की घटनाओं में तेजी आई है। मई महीने के 26 दिनों में संताल परगना में सर्पदंश के 191 मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दुमका जिले में 26 दिनों के भीतर सर्पदंश की 31 घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पाकुड़ जिले में 60 मामले अस्पतालों तक पहुंचे हैं। गोपी कांदर प्रखंड के रोला पहाड़ी गांव में करैत सांप के काटने से एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। झारखंड में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से अगले 5 दिनों तक कहीं भी लू चलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आने वाले दिनों में तेज हवा, आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बेंगलुरु में 8वीं भारतीय ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.82 मीटर का थ्रो किया। उन्होंने वर्ष 2022 के हांगझोऊ एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर का थ्रो किया था। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची पुलिस ने लापुंग से 10 लाख के इनामी नक्सली PLFI सुप्रीमो अमृत होरो को किया गिरफ्तार। रंगदारी और आगजनी के कई मामलों में था वांछित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दिलाया शिकायतों के समाधान और जवाबदेही का भरोसा। कहा, CBSE 12वीं परीक्षा में अब शुरू होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया। ट्रेनों की लेट लतीफी पर विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल।

0: टाटानगर रेलवे स्टेशन दौरे पर पहुंचे महाप्रबंधक ने दिया आश्वासन, पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी प्राथमिकता। रांची समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, राज्य में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना नहीं। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, भाला फेंक कर जीता स्वर्ण पदक, प्रवीण कुमार और दीप्ति जीवन जी को भी मिला गोल्ड मेडल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं गोपाल भगत। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक निर्गुण।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: गोपाल भगत के गाए इस सोहर के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल। लेखिका डॉक्टर आरती स्मित, प्रस्तुत करता है नौमी शांति हेम्ब्रम।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

धरती पर हमारा जीवन किस प्रकार आरंभ हुआ और जीवन अस्तित्व काल खंडों से गुजरता हुआ आज के वर्तमान दौर तक पहुंचा, हम इस बारे में सोचकर अचंभित हो उठते हैं और ये मानने को बाध्य हो जाते हैं कि सचमुच जो जीवन हमें मिला है वह अद्भुत और अत्यंत सुंदर है। किंतु ये सुंदर जीवन सुंदर ही बना रहे, इस पर आज चिंतन करने की और समाधान स्वरूप निष्कर्षों पर अमल करने की जरूरत है। हम जल, खाद्य उपादानों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों जिन पर हमारा जीवन टिका है उनका ही प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहे हैं। बढ़ती आबादी और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के नाम पर मांग या दोहन हमारे पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। दिनों दिन हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले आक्रमण इसका प्रमाण है।

0: इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि हम खान पान और जीवन शैली को लेकर सजग सतर्क हो जाएं, ताकि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले तौर तरीके हमारे बीच मानक ना बन जाएं, ना तो फैशन के नाम पर और ना ही किसी बाध्यता के नाम पर। क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन में सकारात्मक बातें पनपती हैं, और सकारात्मक बातें या सोच हमारे जीवन को निरंतर ऊपर उठाती है। ऐसी ही एक सकारात्मक पहल है हमारा धारावाहिक पोषण न्यूज पर स्वास्थ्य महल। इसकी 11 कड़ियों में आपने हमारे जीवन और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जाना। पोषक तत्वों का विशाल संसार अब भी हमारे समक्ष खड़ा है कि हम उनसे परिचित हो जाएं। आज की कड़ी में विटामिनों की श्रृंखला में आगे बढ़ें।
1: विटामिन B3 सामान्यतः दो भिन्न सम्मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ये दो सम्मिश्रण निकोटिनिक एसिड और नायासिनामाइड।
2: सिगरेट के निकोटिन के ऑक्सीकरण के दौरान विटामिन B3 को पहले अलग किया गया, फिर उसका नामकरण किया गया। इसे निकोटिनिक एसिड विटामिन कहते हैं। इसका संक्षिप्त नाम नायासिन है।
1: नायासिन, जिसे निकोटिनिक एसिड या नायासिनामाइड कहते हैं, हमारे शरीर में दो सक्रिय रूपों में तब्दील हो जाते हैं। ये हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डिन्यूक्लियोटाइड और फास्फोरिलेटेड फॉर्म।
2: नायासिन सबसे अधिक स्थायी रहने वाले बी विटामिनों में से एक है। ये ताप, प्रकाश, हवा, अम्ल एवं क्षार के प्रभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
1: ये एक सफेद स्फटिक नुमा तत्व या पदार्थ है जो कि जल एवं अल्कोहल दोनों में घुलनशील है। नायासिन एवं नायासिनामाइड दोनों छोटी आंत के द्वारा जल्द अवशोषित हो जाते हैं।
2: नायासिन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहयोग करता है,

0: साथ ही स्नायु तंत्र की समुचित प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है।
1: नायासीन हृदय तंत्र, स्नायु तंत्र एवं मस्तिष्क के साथ ही शरीर की अनेक चयापचय प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण एवं मुख्य भूमिका निभाता है। ये समुचित विकास के लिए अनिवार्य है तथा अन्य बी विटामिनों की तरह ही ये पाचक रस की प्रतिक्रिया में भी संलग्न होता है।
0: वास्तव में ये एक पाचक रस का एक अखंड हिस्सा है जो ऑक्सीजन को शरीर के समस्त ऊतकों में पहुंचाने में मदद करता है।
1: पहले बताया जा चुका है कि नायासीन दो सह पाचक रस की भूमिका अदा करता है, एनएडी एवं एनएडीपी, जो मानव नस्ल में 50 से अधिक चयापचयी प्रतिक्रियाओं में संलग्न है।
0: वे ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वसीय अम्ल के संश्लेषण में महत्वपूर्ण है और अमीनो एसिड से नाइट्रोजन हटाने में भी महत्वपूर्ण है।
1: ये लाल रक्त कण एवं स्टेराइडों के बनने के लिए जरूरी है, साथ ही कुछ दवा एवं विषैले पदार्थ के चयापचय में मददगार है। इस प्रकार नायासीन सहपाचकों के लिए मुख्य पूर्वगामी है जो शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है।
0: नायासीन मुख्यतः निकोटिनिक एसिड रक्त शर्करा के नियमन में मदद करता है तथा हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या को भी नियमित रखने में मदद करता है।
1: इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, ये हमें तनाव झेलने के भी योग्य बनाती है। कुछ अन्य सामान्य उपयोग भी हैं, जैसे ये कभी कभी माइग्रेन प्रकार के सिर दर्द में या आर्थराइटिस के उपचार में भी मदद करता है।
0: हृदय एवं रक्त वाहिनियों से संबद्ध स्थिति में नायासीन का प्रवाहित रूप या निकोटिनिक अम्ल नायासिनामाइड को प्राथमिकता नहीं देता है। निकोटिनिक अम्ल रक्त के परिसंचरण को उत्तेजित करता है, इस तरह ये हृदय तंत्र को सुचालित रखने में मददगार साबित होता है।
1: नायासीन की अति अल्प मात्रा लीवर में संग्रहित हो सकती है, किंतु आवश्यकता से बहुत अधिक होने पर ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाती है।
0: नायासीन शरीर में ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड के द्वारा निर्मित हो सकती है, जिसे भोजन में लेना जरूरी है। इसलिए यदि हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें तो अतिरिक्त नायासीन की कम जरूरत होगी।
1: ये जरूरी है कि उचित मात्रा में ट्रिप्टोफेन एवं अन्य पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, किंतु जब नायासीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो अतिरिक्त प्रोटीन को लेना अनिवार्य हो जाता है।
0: बहुत से भोजन जैसे मक्के में ट्रिप्टोफेन एवं नायासीन आसानी से मिल जाते हैं। भोजन में नायासीन शुद्ध रूप से बहुत कम मात्रा से सामान्य मात्रा तक में उपलब्ध होता है।
1: चूंकि विटामिन B3 स्थायी है, किंतु साबुत अनाज के कूटने पीसने की प्रक्रिया में तथा अन्य अन्य प्रक्रियाओं में 90% नायासीन समाप्त हो जाता है।
0: इसके मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं: लीवर, पालतू मुर्गी, बत्तख, मछली, मेवे, दूध एवं अंडा, सूखे मटर और अन्य खाद्य बीज, खमीर, गेहूं का दलिया एवं साबुत दाना।
1: हाल के वर्षों में नायासीन की अधिक मात्रा में सेवन से कभी कभी व्यक्ति को कुछ हल्की फुल्की समस्या हो जाती है, जैसे लीवर या आमाशय में परेशानी अनुभव करना।
0: ऐसी स्थिति में नायासीन के सेवन की मात्रा कम कर देने से परेशानियां कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को नायासीन लेने से रक्त परिसंचरण में उत्तेजना नहीं होती, बल्कि उत्तेजना का शमन हो जाता है।
1: नायासीन की कमी की समस्या विषैलेपन की समस्या की अपेक्षा कहीं अधिक है। लंबे समय तक ये इतिहास रहा है कि नायासीन की कमी के कारण उत्पन्न बीमारी पेलाग्रा बहुत भारी एवं खतरनाक समस्या थी।
0: पेलाग्रा के कारण होने वाली तीन बड़ी बीमारियों को 3D के नाम से संबोधित किया गया है। ये हैं डर्माटाइटिस, डायरिया एवं डेमेंसिया। चौथा डी डेथ यानी मृत्यु का संबोधक है।
1: विटामिन B3 की कमी मुख्यतः उन लोगों में पाई जाती है जिनके आहार में प्रतिदिन मक्के की प्रमुखता होती है और जहां मक्के से नायासीन सही रूप में नहीं निकाला जाता।
0: पेलाग्रा का प्रथम चिन्ह है प्रकाश में त्वचा की संवेदनशीलता। त्वचा रूखी, सूखी, मोटी और उसके बाद पिगमेंट के कारण काली हो जाती है। विशेषकर शरीर का वो

0: भाग जो सूर्य के सीधे संपर्क में ज्यादा रहता है।
1: इसमें सूर्य के संपर्क में आकर त्वचा गर्म या पसीने से भीग जाती है। शरीर का खुला भाग बहुत ही अधिक लाल और संवेदनशील हो जाता है।
0: इसके अतिरिक्त लक्षणों में कमजोरी, सामान्य आलस्य, थकान, अपच, भूख न लगना, त्वचा का बेजान होना है, ये दूसरी बीमारियों को बढ़ा सकते हैं, जैसे दर्द युक्त लाल जीभ, मसूड़े में सूजन, मुंह तथा होठों में जख्म, मितली, जी मिचलाना, सांस में दुर्गंध और डायरिया है।
1: विटामिन B5 प्रायः कैल्शियम या सोडियम लवण की तरह एक पीला अंतरांग तेल स्वरूप पाया जाता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है तथा चयापचय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।
0: जहां ये परमाणु के एक हिस्सा के रूप में काम करता है, इसे सहपाचक ए या को ए कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड खमीर, बैक्टीरिया, फफुंदी, पौधे तथा पशु की कोशिकाओं में तथा मानव शरीर के रक्त, प्लाज्मा एवं लसिका में पाया जाता है।
1: पेंटोथेनिक एसिड सामान्य विकास में मदद करता है। ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के साथ चयापचयी क्रिया कर ऊर्जा उत्पादित करते हैं। ये पाचक रस की प्रक्रिया में प्रमुख है, जो इसे शरीर से कार्बोहाइड्रेट के उपयोग हेतु संभव बनाते हैं।
0: ये बायोकेमिकल्स स्टेरॉयड निर्मित करते हैं, जैसे हार्मोन। पेंटोथेनिक एसिड रक्त शर्करा के स्तर को भी स्थायी बनाने में मदद करते हैं। ये हीमोग्लोबिन की रक्षा करते हैं, जैसे स्नायु, मस्तिष्क एवं पेशीय ऊतक की ये रक्षा करते हैं।
1: पेंटोथेनिक एसिड सहपाचक रस ए के रूप में तनाव मुक्त रखने वाले विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये शरीर में हार्मोन के निर्माण को बढ़ाने में मदद करता है, जो तनाव को कम करने में सहयोग करता है।
0: पेंटोथेनिक एसिड इनहेंस मेटाबॉलिज्म के तकनीक के द्वारा बढ़ती उम्र का प्रभाव तथा झुर्रियों को रोकने में मदद करने का विचार करता है। ये स्नायु पेशीय प्रतिक्रिया के एक प्रकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा उत्पादित करने में मदद करता है। ये भोजन से मिले प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर उसे चयापचय करने में भी मदद करता है।
0: विटामिन B5 नमी, ताप एवं ऑक्सीकरण या रिडक्शन में भी स्थायी रहता है, यद्यपि ये अम्ल के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, जैसे कि विनेगर, क्षार, शुष्क ताप या उष्म के द्वारा।
1: गेहूं में पाए जाने वाले पेंटोथेनिक एसिड की कुल मात्रा का आधा पिसाई में समाप्त हो जाता है। पकने के दौरान मांस में उपलब्ध B5 की एक तिहाई मात्रा नष्ट हो जाती है। साबुत अनाज में B5 आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
0: विटामिन B5 मनुष्य के आंत में मौजूद बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा भी निर्मित होते हैं। इसका नाम पेंटोथेनिक एसिड ग्रीक शब्द पेंटोस से पड़ा है, जिसका अर्थ है सर्वत्र।
1: ये नाम इसे खाद्य पदार्थ में इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। भोजन में इसकी बहुतायत मात्रा आसानी से मिल जाती है।
0: यही कारण है कि इसकी कमी साधारण तौर पर नहीं पाई जाती। वे लोग अपवाद स्वरूप हैं जो बहुत अधिक प्रक्रियात्मक भोजन यानी बहुत दिनों से तैयार डब्बा बंद भोजन खाते हैं।
1: भोजन के शुद्धिकरण प्रक्रिया से विटामिन B5 नष्ट होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं ऑर्गेन मीट, अंडे की जर्दी, खमीर, मछली, मुर्गा, साबुत अनाज का दाना, चीज, मेवे, सूखी फलियां, सब्जियां, विशेषकर शकरकंद, हरे मटर, फूल गोभी।
0: जैसा कि पहले भी बताया गया है कि विटामिन B5 भोजन में आसानी से प्राप्त हो जाता है और इसकी कमी की शिकायत असामान्य है। केवल वे लोग अपवादित हैं जो डब्बा बंद भोजन ज्यादा करते हैं।
1: भोजन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान विटामिन B5 की कार्य क्षमता घट जाती है। विटामिन B5 की अधिकता विषैलेपन के प्रभाव स्वरूप कभी कभी डायरिया की शिकायत हो जाती है।
0: ये तब होता है जब विटामिन B5 बिना किसी अन्य बी विटामिन के लिया जाता है या चयापचय की क्रिया असंतुलित हो जाती है। B5 की कमी से कभी कभी थकान का अनुभव होना आरंभिक एवं सामान्य लक्षण है।
1: विटामिन B6 बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, विशेषकर स्त्रियों के लिए ये बहुत जरूरी है। बी6 तीन संबद्ध सम्मिश्रण का समन्वित रूप है जो भोजन में पाए जाते हैं।
0: इनके नाम है पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिन एवं पायरिडोमिन।
1: पायरिडॉक्सिन अम्ल में स्थायी रहता है, क्षार में ये कुछ कम टिकता है, किंतु पराबैंगनी किरणों में ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक पकाने तथा गलत रूप में संग्रहित करने पर भी नष्ट हो जाता है।
0: पायरिडॉक्सिन प्रोटीन के चयापचय हेतु स्नायु तंत्र में तथा प्रतिरक्षण क्रिया में अनिवार्य है।
1: बी6 जो पाचक रसों का एक घटक है, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रिया करता है। ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त कराने के लिए अति आवश्यक है। ये रक्त में हीमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर को कम करने तथा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूएस में हृदय रोग का 10% कारण हीमोसिस्टीन स्तर का बढ़ जाना है।
0: पायरिडॉक्सिन एवं इसके सहपाचक रस शरीर में विस्तृत रूप में विविध प्रकार की चयापचय क्रिया करते हैं, विशेषकर अमीनो एसिड के चयापचय में तथा केंद्रीय स्नायु तंत्र में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: ये शरीर में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, लाल रक्त कण का निर्माण करता है तथा डीएनए एवं आरएनए का संश्लेषण एवं क्रिया दोनों करता है। ये शरीर में सोडियम एवं पोटाशियम के संतुलन को बनाए रखने में मददगार है।
0: विटामिन बी6 शरीर के द्रव संतुलन को नियमित रखने तथा स्नायु, हृदय एवं पेशी कंकाली तंत्र की विद्युत क्रिया में मदद करता है।
1: पायरिडॉक्सिन विशेषकर प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से अमीनो एसिड प्रतिक्रिया के लिए बी6 पर निर्भर करते हैं। ये अमीनो एसिड को रक्त तक पहुंचाता है और रक्त से कोशिका में जाता है।
0: विटामिन बी6 आवश्यक अमीनो एसिड को बनाने में शरीर की मदद करता है, जो शरीर की कोशिकाओं को बनाने में उपयोगी है।
1: विटामिन बी6 अपने विभिन्न रूपों में बृहत रूप में प्रकृति में उपलब्ध है, यद्यपि ये बहुत से खाद्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है।
0: ये पकाने में नष्ट होता है तथा शुद्धिकरण या अनाज को तैयार करने की प्रक्रिया में भी नष्ट होता है। ये भोजन के द्वारा आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला बी विटामिन नहीं है।
1: विशेषकर यदि हम बहुत सारा डब्बा बंद भोजन करते हैं, ये उन विटामिनों में से एक नहीं है जो पिसे हुए उत्पाद जैसे आटा, मैदा आदि में अपनी समृद्धि प्रतिस्थापित करते हैं।
0: पायरिडॉक्सिन छोटी आंत के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है और संपूर्ण शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में उपयोग किया जाता है।
1: उपवास एवं भोजन की कमी से सामान्य तौर पर विटामिन बी6 की पूर्ति समाप्त हो जाती है, जब तक कि इसे वैकल्पिक स्रोत से न लिया जाए।
0: सामान्यतः 8 घंटे के अंदर बी6 का अतिरिक्त भाग मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। कुछ बी6 पेशी में संग्रहित होते हैं, ये आंतरिक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होते हैं।
1: विटामिन बी6 के मुख्य स्रोत हैं मछली, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, सूखे बीन, मटर के दाने, अखरोट, केले, आलू, फूल गोभी और पत्ता गोभी।
0: इसकी कमी के बारे में बात करें तो अन्य बी विटामिनों की तरह ही विटामिन बी6 की कमी के बारे में अपेक्षाकृत अधिक मामले सुनने को मिलते हैं।
1: इसका मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सी क्रियाएं पायरिडॉक्सिन के द्वारा संपन्न होती हैं और यही वजह है कि इसकी कमी का प्रभाव समूचे शरीर पर दिखता है।
0: इसकी कमी के लक्षण इस प्रकार है: पेशीय कमजोरी, अधीरता, परेशानी महसूस करना एवं डिप्रेशन। इनमें से बहुत से लक्षण नायसिन एवं रिबोफ्लाविन की कमी से उत्पन्न लक्षणों के समान हैं।
1: मितली आना या जी मचलना परतदार त्वचा का कारण भी बी6 की कमी हो सकता है। अधिक मात्रा में सेवन या निर्देश से अधिक समय सेवन करना स्नायु क्षति का कारण हो सकता है।
0: कुल मिलाकर बी6 की कमी विभिन्न प्रकार के स्नायु लक्षण, त्वचा समस्या एवं अमीनो एसिड के चयापचय प्रक्रिया को असामान्य करने का कारण हो सकता है।
1: विटामिन बी12 को लाल विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये लाल क्रिस्टल सदृश पदार्थों का मिश्रण है। विटामिन बी12 इस मामले में अनोखा है कि ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें एक अनिवार्य मिनरल कोबाल्ट पाया जाता है। ये इस मामले में भी अनोखा है कि इसकी मांग या जरूरत अन्य बी विटामिनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ये बहुत ही जटिल परमाणु है। कोबाल्ट के अतिरिक्त कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन के तत्व हैं।
0: कोबालामिन ताप में भी स्थायी रहता है। ये उष्म अम्ल में क्षारीय घोल में संवेदनशीलता के द्वारा ताप में स्थायी रहता है। ये प्रकाश में थोड़ा संवेदनशील होता है और ऑक्सीकरण एवं कम करने वाले तत्व एवं कुछ भारी धातु के द्वारा नष्ट हो जाता है।
1: विटामिन बी12 रक्त के बनने एवं स्वस्थ स्नायु तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये मेलेनिन से सुरक्षा करता है। इसका वसीय पदार्थ हमारे स्नायु को ढकता है।
0: साथ ही ये स्नायु कोशिकाओं के बीच में संदेश पहुंचाने में सक्षम होता है। ये संदेश ही हमें देखने, सुनने, सोचने और चलने के योग्य बनाते हैं तथा स्वस्थ शरीर के द्वारा प्रतिदिन होने वाले उन समस्त कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं।
1: सबसे पहले कोबालामीन छोटी आंत के अंतिम भाग ईलियम के द्वारा अवशोषित किया जाता है। रक्त में ये प्रोटीन ग्लोबुलिन को बांधकर उसे विभिन्न ऊतकों तक ढोकर पहुंचाता है।
0: वास्तव में शरीर विटामिन बी12 संग्रह करता है, इसलिए इसकी कमी होने में लंबा समय लगता है। बी12 का सबसे अधिक सघन लीवर, हृदय, गुर्दे, पैंक्रियाज, मस्तिष्क, रक्त एवं सभी सक्रिय चयापचय ऊतकों में पाया जाता है। ये लाल विटामिन रक्त के लिए महत्वपूर्ण है।
1: विटामिन बी12 प्रकृति में पशुओं के आंतरिक मार्ग में बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होता है और उनके ऊतकों में संग्रहित होता है। यद्यपि बी12 अर्थात कोबालामीन के पास बहुत सारी क्रियाएं नहीं होती जैसा कि अन्य बी विटामिनों के द्वारा होती है।
0: इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ये स्नायु ऊतकों के चयापचय के लिए अनिवार्य है तथा संपूर्ण स्नायु तंत्र के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है।
1: ये बच्चों के विकास को सक्रिय करता है तथा एपेटाइट को बढ़ाता है। ये आयरन, फोलिक एसिड, कॉपर, प्रोटीन एवं विटामिन सी एवं B6 के साथ सामान्य लाल रक्त कण को बनाने में जरूरी है।
0: विटामिन बी12 को ए ऊर्जा विटामिन कहा जाता है। जैसा कि हम सोचते हैं कि ये हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है जब हम भोजन या वैकल्पिक वस्तु के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं।
1: सिद्धांत के रूप में कोबालामीन प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के सही रूप में उपयोग को सक्रिय करता है। ये मानव शरीर में आयरन की क्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करता है तथा DNA एवं RNA के संश्लेषण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
0: इसी प्रकार कोलीन अन्य बी विटामिन मैथियोनिन के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण है। एक एमिनो एसिड बढ़े हुए ऊर्जा स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।
1: फोलिक एसिड के साथ मिलकर ये एनीमिया के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। ये कठिन है कि केवल भोजन के द्वारा बी12 लेने से शरीर में कभी इसकी कमी हो।
0: तात्पर्य ये है कि यदि हम भोजन में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो इस विटामिन की कमी की शिकायत कभी नहीं मिलेगी।
1: यद्यपि हमें विटामिन बी12 की अत्यल्प मात्रा की जरूरत होती है, ये उन विटामिनों में से दुर्लभ विटामिन है जिसकी जरूरत चयापचय के लिए भोजन के द्वारा होती है।
0: पशु स्रोत से मिलने वाले प्रोटीन में विटामिन बी12 की महत्वपूर्ण मात्रा पाई जाती है। ये मनुष्य की आंत में बैक्टीरिया के द्वारा भी तैयार किया जाता है।
1: पर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि इस स्रोत से स्वाभाविक रूप में कितनी मात्रा अवशोषित हो पाती है तथा कितनी मात्रा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है।
0: एंटासिड के बहुत अधिक प्रयोग से विटामिन बी12 की अवशोषण क्षमता एवं संग्रह क्षमता में या दोनों की मात्रा में कमी आ सकती है।
1: इसके मुख्य स्रोतों में मांस, मछली, अंडा, दूध से तैयार उत्पाद, लीवर, किडनी एवं हृदय है।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक पोषण नींव पर स्वास्थ्य महल। लेखिका डॉक्टर आरती स्मित और प्रस्तुतकर्ता थी नौमी शांति हेम्ब्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दो बजने वाले हैं अब

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी को यूजी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम एक प्रगतिशील प्रणाली है। भारत के कई विश्वविद्यालय और संस्थान, साथ ही विश्व भर के कई संस्थान इस प्रणाली को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सीबीएसई ने देश में इस प्रणाली को लागू किया है। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कुर्बानी का त्योहार बकरीद आज मनाई जा रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में खास नमाज अदा की गई है। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में भी आज सुबह खास नमाज अदा की गई। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 42.8 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बघा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी अंत्योदय ट्रेन के एक डिब्बे में आज सुबह आग लगने की घटना हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय रेल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है।

0: अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगही में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहाद।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहाँ लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी

0: के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में। फिल्म है एक दूजे के लिए। आनंद बख्शी का गीत है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मजरूह सुल्तानपुरी का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाजें मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म एक नज़र से।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: Akashvani at 90.
1: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रपट से कार्यक्रम में।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। कार्यक्रम के अंत में सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित को फिल्म आँखें देखी में। गीतकार पद्मा सचदेव, संगीतकार हैं जे कौशिक।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। कलाकार हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह को। आइए सुनते हैं इनके स्वर में अगली गजल।

तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और फिर 5 बजे से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

0: उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
1: क्या बात है,
0: ताकि एक वो हमारे और आगे कर सकें।
1: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है। जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट तारीफ, जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है। और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ, जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें हैं वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है। वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह, अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं। हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती
1: दिल की बात.
0: सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी
1: बिल्कुल.
0: है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते. और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं. सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है. इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं. और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए कि सिर्फ खुश करने के लिए. इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं.
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल.
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें
1: जी,
0: उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल. आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए. तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं. एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है. लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है. तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है. तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए.
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मिया होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है. पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं. ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है. मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है. पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है.
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं. जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के. तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं. और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गवा देते हैं.
0: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है. एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है. मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है. आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए. सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है. फिर फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है।
0: और ये जो गेम जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
1: जी कोई नहीं,
0: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करिए या किताबें पढ़े।
1: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुने,
0: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जब खत्म भी चलना सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: बन रहे तो याद करोगे समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर
1: बिल्कुल,
0: लेते
1: बहुत
0: हैं।
1: से ऐसे गेम आ गए हैं खतरनाक।
0: जी
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही
1: सही बात है, फिर हम
0: है।
1: एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं, पर अगर हमें बहुत इन्हें ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं। तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: बिल्कुल
0: तक
1: वो
0: हो।
1: मनोरंजन तक ही रहना चाहिए,
0: जी
1: बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: जिंदगी की
0: चाहिए?
1: रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई है,
0: धीमी हो गई
1: क्योंकि
0: है।
1: बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ
0: जी
1: हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है। तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी
1: तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड
1: कोई आपके
0: कम।
1: घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा, जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे। तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं,
1: हाँ,
0: अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का
1: एक ही
0: करेंगे
1: कर
0: कि
1: रहे हैं,
0: टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है। तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें, उसे उसी जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके उसके आसपास नहीं होंगे, तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको
0: और
1: इंटरनेट की।
0: राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें। यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें, और दूसरा एंटीना को हॉरिजेंटल इन्हें आड़ा रखें। यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले,
1: बिल्कुल, एक गीत सुन
0: सुनते
1: लेते
0: हैं
1: हैं।
0: गीत।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें, और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छूट गई है। क्या
0: अरे
1: बात
0: वाह,
1: है तो पढ़ाई
0: देखा,
1: हो
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे,
1: जी, और
0: क्योंकि
1: अभी
0: अति हर चीज के लिए भी
1: अब
0: बुरी होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: अति सर्वर्थ वर्जित, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती आज की
1: आज की
0: मुलाकात
1: मुलाकात बस
0: बस इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिस्नर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते
1: तो हमारे
0: हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब अन्य बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है,
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है, तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कॉमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
1: बिल्कुल दीदी, और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाओ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में एक गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते हैं ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी,
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी, जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है खाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में, और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती थाने में सोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी,
0: जी, जी। तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने समधन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के मनगढ़ंत सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम ने अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा ये उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी। ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2466-2287-0288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवावाणी में। उम्मीद है आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे। वैसे जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका लगाव मायने रखता है जो जुड़े हुए रहते हैं हमेशा बेतार के तार से। तो आइए प्यारे साथियों, इस जुड़ाव को देते हैं फिर से एक नया आयाम, हर शाम की तरह इस शाम भी युवावाणी के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ने से पहले आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ सहेज कर लाए हैं हम आज के युवावाणी के पिटारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बातें करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जयंती के बारे में। इसके बाद प्रस्तुत करेंगे बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट। रेडियो रिपोर्ट के पश्चात चलेंगे अपने साप्ताहिक स्तंभ इतिहास दर्पण की ओर और अंत में समसामयिक गतिविधियों पर डालेंगे एक नज़र और फिर लेंगे आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का कार्यक्रम, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ।

0: आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। दोस्तों आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1883 के साल हुआ था। उन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और हिंदुत्व विचारधारा के प्रमुख प्रणेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गाँव में हुआ था। कम उम्र में ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने उनका पालन पोषण किया। किशोरावस्था से ही सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। उन्हें पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक की डिग्री मिली और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। दोस्तों उन्होंने अपना सारा जीवन देश हित को समर्पित किया। सन 1904 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रणनीतियां बनाईं और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इस क्रांति को गदर के बजाय सुनियोजित तरीके से किया गया संग्राम कहा गया। साथियों उनका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा, फिर भी वे भारत माता की आज़ादी के लिए डटे रहे। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल भेजने के आरोप में 1910 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत लाते समय फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर वे जहाज के शौचालय की खिड़की से समुद्र में कूद गए और तैरकर तट पर पहुँच गए, लेकिन उन्हें फिर पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई और अंडमान निकोबार के कुख्यात सेल्युलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। वहां उन्हें अत्यधिक शारीरिक यातनाएं दी गई। दोस्तों उनके अथक त्याग और तपस्या की वजह से आज हम आज़ादी के स्वर्णिम क्षण देख रहे हैं। ऐसे महान सपूत जिसने भारत माता को गौरवान्वित किया, उन्हें आज उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि। उनकी अमर कृति सदैव भारत के कण कण में विद्यमान रहेगी। दोस्तों आज इस विशेष दिन पर आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसे चुना है हमने फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर से।

AIR at 90. स्वागत है दोस्तों आपके चहेते कार्यक्रम युवा वाणी में। दोस्तों अब चलते हैं डेली ट्रिविया की ओर और डेली ट्रिविया का सवाल है आज आपसे कि आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी, आप इस सवाल का जवाब अभी हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों फन फैक्ट्स में आइए आपको बताते हैं कि आप हमें रेडियो सेट के अलावे किन किन माध्यमों से सुन सकते हैं। पहला माध्यम है दोस्तों लाइव वेबसाइट। आकाशवाणी न्यूज या एयर लाइव की वेबसाइट पर जाकर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा हमसे जुड़े रह सकते हैं। दूसरा जरिया है दोस्तों मोबाइल ऐप। हमारे ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को आप अपने स्मार्टफोन पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप आकाशवाणी समाचार के एक्स हैंडल @AIR News Hindi पर लगातार समाचार अपडेट और बुलेटिन प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों कार्यक्रम का रुख करते हैं हमारे वीकली सेगमेंट युवा अभिव्यक्ति की ओर। आज युवा अभिव्यक्ति में प्रस्तुत है बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है सौरव कुमार। युवानी की खास पेशकश युवा अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों इस सेगमेंट में हम जानने समझने की कोशिश करते हैं युवा वर्ग से संबंधित विषयों पर आज के युवाओं की विचारधारा। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे ही खास मुद्दे को लेकर जो आज के युवाओं के सामने विशेष चुनौती पेश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम युवाओं में नशे की लत, इस विषय पर कुछ युवाओं से बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लत से

0: से छुटकारा पाया जा सकता है। पहले युवा साथी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। आप अपना नाम बताएं।
1: जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार है।
0: प्रीतम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा अभिव्यक्ति सेगमेंट में। प्रीतम जी, आप बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं एक शिक्षक हूँ।
0: शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों की मानसिकता और युवाओं की मानसिकता को भली भांति समझते होंगे। तो आज का जो विषय है प्रीतम जी, जिस पे हम बातें कर रहे हैं कि युवाओं में नशे की जो लत है, इस पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकें और ये हमारे समाज को किस तरह से खोखला कर रही है, तो इस विषय में आप कुछ उनसे साझा करने की कोशिश करें।
1: देखिए, नशा जो है आजकल के युवा को बर्बाद ही कर रहा है
0: जी,
1: और ये लत जो है आसानी से अपने आप जो है कि बच्चों में आ जाता है। जैसे पढ़ाई के ही क्रम में, जैसे जिस बच्चे को ट्रेन से दूसरे जगह जाकर के पढ़ना होता है
0: जी,
1: तो आने जाने के क्रम में वो दूसरों को देख करके सीख जाते हैं। उनको जो है संगति में उनको लगता है कि ये अच्छा चीज है, और दूसरों को देख करके जो है नकल कर लेते हैं और आसानी से जो है कि शिकार बन जाते हैं नशा का, और बिना सोचे समझे, जिसका कि परिणाम आगे चल करके बहुत बुरा होता है।
0: एक तरह से हम समझ सकते हैं कि अभी के समय में टेक्नोलॉजी के युग में या डिजिटल युग में, मतलब एक तरह वायरल हो रहा है नशा। पहले भी नशा होता था, लेकिन अब के समय में देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता बनती जा रही है। तो प्रीतम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नशा तो एक लत है ही, तो इस पे हम विजय कैसे प्राप्त कर सकें या फिर इसको हम कैसे छोड़ सकें?
1: इसको विजय करने के लिए कुछ नियम जो है उसका पालन करना होगा। जैसे कि हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ करके फ्रेश होकर के फ्रेश हवा में टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, ताकि शुद्ध हवा जब हमारे मन में जाएगा तो हमारा मस्तिष्क जो है शुद्ध वायु से साफ होगा, तो दिमाग भी जो है अच्छे विचारों को सोचेगा और अच्छे विचार जो है हमारे मन में पनपेगा, जिससे हम जो है कि अच्छे विचारधारा को अपने आप में ला करके सही रास्ते पर चलेंगे। और जहाँ तक है कि योग भी करेंगे, योग अगर हम सुबह उठ करके करते हैं, टहलते हैं, तो हमको
0: एक सकारात्मक ऊर्जा
1: मिलेगा और हम जो है कि आसानी से अच्छे रास्ते पर चलेंगे।
0: मतलब दिनचर्या को हम सुधार दें,
1: दिनचर्या को सुधार दें
0: और अच्छी सोच के साथ अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएं, तो हम इस पर विजय।
1: और संगति भी उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छी संगति में जो है कि ध्यान दें, जो अच्छी चीजें हैं उसकी ओर जो है आकर्षित हो, बुरी चीजों को छोड़ें।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षकों से जो है कुछ अच्छे और बुरे क्या है उसे मार्गदर्शन लेकर के, या अपने से बड़ों से भी, घर में भी बड़े हैं, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, जो भी बड़े हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके मार्गदर्शन से वो सही रास्ते पर चल सकते हैं और नशा से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कायदे की बात आपने बताई। हम आशा करेंगे कि हमारे युवा इस चीज को समझें और इस चीज से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बस साथी जुड़ गए हैं हमसे, आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम सेवक कुमार है।
0: सेवक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा अभिव्यक्ति सेगमेंट में। सेवक जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप क्या करते हैं?
2: मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ।
0: जी, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो विषय लेकर के हम आए हैं, उससे हम आपको रूबरू करवा दें कि युवाओं में जो लत है नशे की, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं और इसके निदान के लिए आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि युवाओं में जो ये अभी के दौर में नशा का जो प्रकोप फैल चुका है, एक वायरल होता जा रहा है अलग टर्म में कहें तो
2: जी,
0: और घुन की तरह खा रहा है हमारे समाज को, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है?
2: देखिए, ये तो नशा तो एक दूसरे को देखते हुए, जैसे युवा लोग जो है एक दूसरे को देख करके उससे प्रेरित हो जाता है। जैसे कि कोई भी नशा कर रहा है, कोई तरह का नशा हो, तो जो टीन ईयर्स जो होता है उसमें ज्यादा अट्रैक्ट कर जाता है इसको देख करके, कि वो कर रहा है तो जरा मैं भी ट्राई करके देखूं कि लगता कैसा है। उसके कारण से क्या होता है ना, कि बच्चे लोग 6, 7 से 8 से ही स्टार्ट कर देता है नशा, चाहे शराब पीना हो या गुटखा खाना हो या सिगरेट पीना हो, बहुत सारे नशा है जो कि इसके लत में लोग आ जाता है, स्टूडेंट खास करके युवा लोग।
0: एक ट्रेंड मतलब चल
2: ट्रेंड मतलब हो गया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रील्स में अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे प्रेरित होकर के उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा, कहने का मतलब है कि नशा में उससे ही ज्यादा नशा में इन्वॉल्व हो जाता है लोग। ये खास करके ये तो युवा का ही है, ज्यादातर युवा ही इस लत में पड़ता है और ऐसा पड़ जाता है कि इसमें पूरा लीन हो जाता है, जिसके कारण उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं लोग, और
0: समाज को क्षति, हमारे देश को क्षति है।
2: बस वही,
0: जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देश है।
2: हाँ।
0: और यहाँ 60% से ज्यादा युवा वर्ग निवास करते हैं, तो ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, घोर संकट में पड़ सकते हैं, अगर नशे के इस लत को अगर हम न खत्म करें समय रहते।

0: जी बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस कारण से तो हम रूबरू हैं और हर कोई जान रहा है कि ये इस वजह से हो जाता है नशे का लत या फिर उसकी हानि, सब कुछ हम समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं।

0: होना पड़ेगा कि बच्चे किस युवा के साथ में वो अपना दोस्ती बढ़ा रहा है या तो किस संगति में जा रहा है। सबसे पहले तो उनको ध्यान रखना चाहिए,
1: सबसे
0: क्योंकि
1: पहली बात हम संगत पे नजर
0: हाँ
1: रखें।
0: संगत पे नजर रखें, क्योंकि घर में क्या सोचता है कि चलो जो भी आ रहा है घर में दोस्त लोग आ रहा है उनके साथ बेहिचक बोल देता है ठीक है जाओ। तो पहले उसको समझना चाहिए कि किसके साथ भेज रहे हैं या किसके साथ जा रहा है, उसका क्या नेचर है, पहले उसको देखना होगा। अगर उसका गलत आदत है या नशा कर रहा है तो उसको उसके साथ सबसे पहले उसको जाने नहीं देना है, समझाना है कि देखो उसका आदत खराब, उसके साथ में नहीं जाना है नहीं तो आदत खराब हो जाएगा। तो अगर नहीं मानता है तो फिर उसको उस माहौल से हटा दिया जाए, ठीक
1: और
0: है।
1: लत लग जाए सेवक जी, तो उससे हम छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करें?
0: देखिए ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं कि आप उसमें बहुत सारा मेडिसिन भी आता है जो आयुर्वेदिक में है, होम्योपैथ में है, अंग्रेजी में, उसको भी यूज करवा सकते हैं। लेकिन हाँ जानने के बाद तो कोई भी नशा जिसको आदत है वो खाएगा नहीं या छोड़ने का कोशिश करेगा नहीं, उसको चुप करके ही देना पड़ता है। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है, अगर दिए तो अच्छा है।
1: अंदर से चाहता है कि मैं छोड़ दूं इस चीज को,
0: हाँ
1: तो उसके लिए क्या उपाय हो
0: तब तो फिर
1: सकता है?
0: उसका उपाय है उसको मेडिसिन दिया जाए तो वो छूट जाएगा उसके लिए।
1: कुछ थेरेपी
0: हाँ
1: वगैरह,
0: थेरेपी सब देने से, या कोई नेचुरोपैथी हो या तो होम्योपैथी हो अंग्रेजी में किसी में
1: काउंसलिंग
0: भी,
1: वगैरह मनोचिकित्सक लोग करते
0: हाँ,
1: हैं, ये
0: वो
1: सब चीजों
0: सबसे
1: का हम
0: हाँ
1: सहारा ले
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी को समझा रहे हैं समझाने से नहीं समझने वाला है। अगर जिसको लत लग गया है तो वो समझाने से नहीं समझने वाला है। आपको बस यही सब का चीज जो है सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो माहौल को चेंज करना
1: मन
0: पड़ेगा।
1: से जुड़ी चीज है तो इसको मन को बदलना
0: हाँ
1: पड़ेगा,
0: मन को बदलना
1: पहले
0: पड़ेगा।
1: अंदर से एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे छोड़ देना है,
0: हाँ
1: तो उसके
0: तब
1: लिए
0: हाँ
1: कदम उठाना होगा।
0: जो छोड़ना चाहेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो छोड़ सकता है। लेकिन जो छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसके लत में बुरा तरीका से फंस गया है, तो उसको बाहर निकलना मुश्किल है। इसके लिए उसको पहले से ही
1: मुश्किल
0: एक्टिव,
1: है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
0: हाँ नामुमकिन तो लगभग कुछ भी नहीं है।
1: जी
0: हाँ और अगर कोशिश किया जाए तो
1: हाँ, युवा वर्ग चाहे तो कर सकता है, क्योंकि
0: कर
1: युवा कुछ
0: सकता
1: भी
0: है,
1: कर सकता है,
0: कुछ कर
1: खुद से
0: सकता
1: भी
0: है,
1: लड़ सकता है।
0: बस
1: इस नशे से
0: बिल्कुल।
1: लड़ना एक खुद से लड़ने जैसी चीज है,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसमें समाज, परिवार, सब लोग मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है,
0: हाँ
1: इसको
0: बिल्कुल
1: छोड़ा जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: बस
0: बिल्कुल
1: हमें अंदर से मजबूत होने की जरूरत है। पहले समझना है कि ये बुरी चीज है, इसको
0: हाँ
1: छोड़ना है, तो हम आगे आए तो मदद करने के लिए हर चीज
0: जो
1: तैयार है। जी
0: जो नया लत लगा है वो उसको माइंड डाइवर्ट करने से हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा एज हो गया उनका, बहुत
1: हाँ,
0: समय
1: आदि हो
0: से
1: गए हैं,
0: आदि हो गया है, उसके बिना रह नहीं सकता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है।
1: वो
0: क्योंकि
1: पूरे अंधेरे में
0: हाँ
1: जा
0: आप
1: चुके
0: कितना
1: हैं।
0: भी कुछ बोलिए वो कोई समझने वाला है नहीं।
1: चले
0: हाँ
1: चलो
0: मतलब
1: क्या बोलते
0: एडिक्ट
1: हैं
0: हो जाता है
1: जी।
0: उससे,
1: लेकिन एक युवा का जो फेज होता है, पढ़ाई है, करियर है,
0: बस
1: बहुत सारी
0: उसी के
1: चीजें
0: चलते तो
1: होते हैं,
0: बर्बाद हो
1: तो
0: जाता है
1: वो
0: ना।
1: उस समय में इन सब चीजों का जो है ये प्रकोप बहुत खतरनाक है। तो ऐसे में हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। व्यस्त रहना सबसे बड़ी चीज है,
0: हाँ
1: अपने
0: व्यस्त
1: मन को खाली न छोड़ना,
0: हाँ जी बिल्कुल
1: व्यस्त रहना, अधिक से अधिक काम करना, और कुछ रचनात्मक अगर करते हैं, क्रिएटिव, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो उन सब चीजों को बढ़ावा दे करके आप इस पे ओवरकम कर सकते हैं। हर तरफ से एक समन्वित प्रयास होगा
0: हाँ
1: तो इसका एक अच्छा
0: बिल्कुल
1: सफल रास्ता मिल सकता है।
0: जी जी
1: पेरेंट्स हुए, टीचर्स हुए,
0: हाँ
1: और हमारे
0: एक
1: साथी,
0: हाँ
1: संगाती,
0: हाँ
1: दोस्त, मित्र, परिवार,
0: माहौल
1: स्वजन,
0: माहौल जो
1: समाज
0: है
1: का एक
0: माहौल
1: पूरा
0: जो है
1: एक
0: सामाजिक
1: जो
0: प्रभाव,
1: सिस्टम है,
0: हाँ
1: वो अगर चाहे तो उस व्यक्ति को साथ दे करके, और वो व्यक्ति खुद से चाहे
0: हाँ
1: तो इस चीज से छुटकारा पाया जा सकता। तो इन सब चीजों से हम सीख सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: बात करने का यही एक मकसद भी होता है
0: बस
1: सेवक
0: बस
1: जी, कि हम जाने समझे, अगर किसी मुद्दे पे बात ही ना हो तो फिर बात नहीं बनती।
0: नहीं कोई बात
1: आप
0: नहीं
1: हमसे
0: बनेगा
1: जुड़े और
0: जी।
1: अपने इतने अनमोल बातें हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस बेहतरीन नगमे के साथ, जिसे लिया हमने फिल्म ओ रोमियो से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। तो इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और ट्यून रहिए हमारे साथ।

इस बेहतरीन नगमे के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। युववाणी में अब वक्त है हमारे वीकली सेगमेंट इतिहास दर्पण का, जिसमें आप जानते हैं दिन विशेष के घटनाक्रमों के बारे में। 1996 के साल में चलें तो रूस चेचनिया को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ था। इस साल 1998 में बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध घोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। 2002 के साल में चले दोस्तों तो 2002 में नेपाल में आपातकाल लगाया गया था। वहीं 2008 में नेपाल में ही 240 साल पुराने राजशाही का अंत भी हुआ था। आइए चलते हैं आज के दिन जन्मे महान हस्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म हुआ, जैसा कि हमने कार्यक्रम में पहले भी चर्चा किया। वहीं 1921 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डीवी पुलस्कर का जन्म हुआ। आज के दिन यानी 28 मई को गोपाल प्रसाद व्यास का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। वहीं 28 मई 1954 को विजय सिंह पथिक का अवसान हुआ, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों आज के लिए इतिहास दर्पण में बस इतना ही। आगे अगले हफ्ते इसी दिन फिर से पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और रूबरू करवाएंगे आपको दिन विशेष के घटनाक्रमों से। फिलहाल एक और गीत है आपके लिए फिल्म धुरंधर से, आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की। तो इन्जॉय कीजिए और ट्यून रहिए युववाणी के साथ।

आइए दोस्तों, चलते चलते करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। टीपी लिंक द्वारा वाईफाई 7 उपकरणों का स्थानीय निर्माण शुरू होने से भारत ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक वाईफाई 7 के युग में प्रवेश कर लिया है। लिबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में तैनात मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। और 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक फीफा विश्व कप का आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी भी अब कर रही है इशारा, अब इस शो को रैप अप करने का वक्त हो गया है। चलते चलते हमेशा की तरह यही कहेंगे आपसे कि हंसते मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिए अपने सपनों का। मिलेंगे फिर इसी वक्त, इसी प्रोग्राम, इसी फ्रीक्वेंसी पर। इसी वादे के साथ अपने रेडियो मित्र बंटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में फिल्म है चलते चलते। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म अतरंगी रे से। आवाज़ है अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति की। बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इसकी धुन बनाई है AR रहमान ने।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं आप सुनिए फिल्म पार्टनर से ये नगमा, जिसे गाया है सोनू निगम और साथियों ने। संगीतकार हैं साजिद वाजिद और इसके बोल लिखे हैं सबीर अहमद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म बादशाह से, जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने, शब्द रचना की है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। इसमें आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रस्तुत होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, साथ ही सुनेंगे कल हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के साथ साथ उनके प्रसारण के समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम और 7 बजे पेश होगा लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव। 7:52 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी और 8 बजे पेश होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर पुनः पेश होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर और पुनः रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब एक नजर डालते हैं कल हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान और 6:05 पर प्रस्तुत होगा चिंतन मनन। 6:10 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम और 6:40 पर प्रस्तुत होगा रामचरित मानस गान। सुबह 7 बजे पेश होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम का ताजा हाल, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां। 9:06 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने और 9:30 पर प्रस्तुत होगा सुगम संगीत कार्यक्रम। 10 बजे पेश होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और 11 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 12 बजे प्रस्तुत होगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक और 12:30 पर सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 1 बजे पेश होगा लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग और 1:30 पर आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम।

2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। पुनः संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम और शाम 6 बजे हम उपस्थित होंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के साथ। शाम 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और 7:52 पर प्रस्तुत होगा सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी। 8 बजे पेश होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे समन्वित रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प। और 10 बजे पेश होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। 10:30 पर जारी होगा श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी। पुनः रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रस्तुत होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही आपने सुना कल हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: स्वागत है श्रोताओं आपका इस प्यारे कार्यक्रम में। सबको किशन का नमस्कार,
1: साथ में सभी को अन्नो का भी नमस्कार। किशन भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार अन्नो भाई, सुनाइए और सब क्या हाल समाचार हैं?
1: हाल समाचार तो सब ठीक ठाक है किशन भाई,
0: बहुत बढ़िया।
1: आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद भी है और हमारे देशवासी बड़ी धूमधाम से इसे मना भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, कोई भी धर्म जो होता है ना, वो कहते हैं ना धर्म धारण करने योग्य, पहली बात तो ये। दूसरी, कोई भी पर्व त्यौहार जो आते हैं वो समाज में समरसता लाने का प्रयास करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। धर्म जो है, रीति रिवाज जो है, संस्कृति है, ये जो पर्व त्यौहार आते हैं, कभी ईद है, कभी बकरीद है, कभी दशहरा है, कभी होली है, तो ये सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए एक प्रतीक के रूप में हम महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज भी ये देखिए एक प्रिय चीज़ कुर्बानी का सिलसिला है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चाहे जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, ये सही है कि ये मुस्लिम भाइयों का आज त्यौहार है, लेकिन आज हम भी इस त्यौहार में बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ शिरकत करते हैं अन्नो भाई।
1: बिल्कुल, और किस और जो किशन भाई
0: जी,
1: यह त्याग आस्था बलिदान

0: और इंसानियत का भी प्रतीक माना जाता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल,
0: हमारे सभी श्रोता भाइयों को भी ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: हम अपने प्रसारण के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अन्नो भाई, आज के दिन, आज के ही दिन नहीं, वैसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने अपने लेखनी से, अपने जो विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका रहा अंग्रेजों के खिलाफ उस समय, ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अंततः उन्हीं के बलिदानी के बाद, कुर्बानी के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी स्वतंत्रता सेनानी की यदि हम चर्चा करते हैं तो उसमें, जैसा कि नाम से ही अस्पष्ट है अनुभव, वीर सावरकर
0: बिल्कुल
1: एक महान क्रांतिकारी हुए थे और बड़े अच्छे वो अपने क्रांतिकारी विचारधारा को उस समय तत्कालीन युवाओं के ऊपर अपने लेखनी के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से अमिट छाप छोड़े, जिससे कि उस समय तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए इनके साथ कई एक लोग जुड़ गए और धीरे धीरे वो कारवां ऐसा बना कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। इसके लिए उनको कई एक बार जेल भी जाने पड़े,
0: बिल्कुल
1: कई एक यातनाएं सहनी पड़ी। यदि उस कठोर यातनाओं की हम चर्चा करते हैं तो सचमुच में लगता है कि वो वाकई एक वीर पुरुष थे, एक बहुत ही वीर क्रांतिकारी नायक थे।
0: बिल्कुल किशन भाई, और वीर सावरकर जी जो थे वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक भी थे किशन भाई।
1: बिल्कुल,
0: और वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती भी है।
1: ये उनका पूरा नाम था
0: जी।
1: जी, जी।
0: और आज ही के दिन यानी 28 मई को सन 1883 ईस्वी को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में वी डी सावरकर जी का जन्म
1: जी,
0: हुआ था।
1: महाराष्ट्र में आज भी उस गांव, जो इनका गांव है
0: जी,
1: एक स्मारक स्थल बने हुए, बल्कि एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं आप लोग। बड़ी दूर दूर से उस प्रतिमा और उनके गांव को देखने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं।
0: जी
1: जी,
0: और बचपन से ही जो है किशन भाई, वीर सावरकर में देशभक्ति की भावना बड़ी कूट कूट कर भरी थी।
1: जी।
0: और कम उम्र में ही उन्होंने अपने मित्रों के साथ मित्र मेला नाम का एक संगठन भी बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति को फैलाना भी था। वैसे तो वे एक देशभक्त थे ही, इसके साथ साथ वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी जो है किशन भाई, युवाओं को संगठित भी उन्होंने किया था।
1: बिल्कुल,
0: और अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी उन्होंने की थी।
1: बिल्कुल, और कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये भी उस समय इंग्लैंड का भी दौरा किए थे।
0: बिल्कुल
1: जी जी, लंदन में रह के भी उन्होंने पढ़ाई किए थे और वहां से आने के बाद जो उनकी लेखनी शुरू हुई, एक बड़ा ही प्रेरणा स्रोत रहा था उस समय, खास करके युवाओं के लिए, क्रांतिकारी युवाओं के लिए।
0: जी
1: अन्नो भाई, आज के कार्यक्रम में और भी अच्छी अच्छी बातों की हम अपने श्रोताओं के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत एक बढ़िया सा देवी गीत से करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ भाई,
1: खोला है केवाड़ी, अरहूं विपतिया हमार।
0: किसी भी विपत्ति में हम ईश्वर का ही आराधना करते हैं, देवी माता की ही आराधना करते हैं, वही सारी विपत्तियों को दूर करते हैं।
1: जी
0: अन्नू भाई, आज हम अपने श्रोताओं के साथ खास बातचीत करना चाहते हैं, उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आज हमने शहरीकरण के कारण कुछ चीज़ें खोई भी है। अब जैसे एक समय ऐसा था कि पानी हम लोग छोटे छोटे कुएं से, चापाकल से प्राप्त करते थे।
1: तालाब से,
0: जी बिल्कुल
1: और हमारे खास करके ग्रामीण इलाकों में किशन भाई,
0: जी,
1: तालाब हमें पग पग पर देखने को
0: मिलता
1: मिलते
0: था,
1: थे।
0: कुएं भी मिलते थे,
1: जी
0: कुएं का मुड़ारा कहिए कितना सुंदर आकर्षक लगता था।
1: जी
0: और आज के परिस्थिति में है कि आधुनिकीकरण के कारण आज जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बड़े बड़े मशीन लगा करके बड़े दूर दूर तक जमीन के अंदर, जिसको बोरिंग कहते हैं हम लोग,
1: जी
0: उसके बाद भी बहुत जगहों पर वो मशीनें ठीक से काम नहीं कर
1: जी
0: रही है,
1: और जल
0: जो
1: का
0: एक चिंता।
1: आवश्यकता से
0: जी,
1: अधिक जो है दोहन किया
0: हाँ,
1: जाने
0: दोहन तो
1: लगा।
0: है, जल का सही मायने में जो हमें सदुपयोग करना चाहिए,
1: जी
0: उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने जल क्या, अरे जल ही जीवन है, जल
1: बिल्कुल
0: अनमोल है, जल नहीं है तो हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है अन्नो भाई। और आज देखिए एक चिंता की बात और भी है कि पक्कीकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, अब पहले ये होता था
1: जी
0: कि स्वाभाविक रूप से जो हम लोग जल उपयोग करते थे और जो बेकार उपयोग करने के बाद जो जल हम नालियों में प्रवाहित करते थे,
1: जी
0: तो उनका जो है कि जमीन के अंदर सोखना शुरू हो जाता था।
1: जी और इससे
0: लेकिन
1: जो है भूमि का जल स्तर
0: जी
1: बना
0: जी
1: रहता
0: जी जी
1: था।
0: एक अच्छी बात ये थी, आज पक्कीकरण इतने हो गए कि शायद जमीन वर्षा का भी जल जो है आज, हालांकि देखिए वैज्ञानिकों ने आज भी कुछ चीजें आविष्कार की हैं कि आप चाहें तो लंबे समय तक इस वर्षा के पानी को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी
0: चलिए, जल संरक्षण में आहार और पोखर की भूमिका क्या है, इस विषय पर चिंतामणि मंडल क्या कुछ बताते हैं, आइए ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं।
2: मनुष्य की तीन प्रमुख आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास। इसके लिए जल का होना अति आवश्यक, क्योंकि जल ही जीवन है। सृष्टि की सारी सुंदरता जल पर ही अवलंबित है। जल नहीं तो अन्न नहीं, फल फूल नहीं, सूना है संसार। जल ही सभी प्राणियों का आहार है। जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, जल विद्युत, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन विकास, जल क्रीड़ा, परमाणु संयंत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अतः जल का संरक्षण करना आवश्यक है। पोषाहार के बिना धरती पर कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। आहार मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का मूलाधार है। यह मानव के स्वास्थ्य एवं समृद्धि का मूल अंग है। मनुष्य का प्रधान भोजन अन्न, उसके बाद मांस, मछली, फल, दूध, अंडा एवं साग सब्जी हैं। इसके प्राप्ति के लिए जल का होना आवश्यक। जल संरक्षण के मुख्य स्रोत नदी, नहर, नलकूप, कुआं, जलाशय, पोखर, भूमिगत जल और वर्षा है। जल और वन में घनिष्ठता का संबंध है। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन वर्षा का आवाहन करते हैं तथा वर्षा से वन बढ़ते हैं। इससे संरक्षित साधनों जैसे पोखरों, गड्ढों, जलाशयों में जल संरक्षित होते हैं। संरक्षित जल पर्यावरण संतुलन का एक स्रोत। जल संरक्षण हेतु जलाशयों एवं पोखरों का होना आवश्यक है। जलाशयों एवं नहरों का निचली तल कंक्रीट का बना होना चाहिए ताकि वह जल को रोक कर रख सके।

सके। बाढ़ के समय में इन जलाशयों में स्वतः जल संरक्षित हो जाएगा अथवा अधिक वर्षा होने पर यह जलाशय खुद जल

जल संरक्षण में सहायक साबित होता है। विभिन्न प्रकार के नदी घाटी परियोजना एवं नदियों पर बांध का निर्माण करके भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नांगल, हीरा कुंड, कोसी नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा, रहिंद्र गंडक घाटी परियोजना। गर्मी के समय में जल स्तर भूमि के नीचे जाने के कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका मूल कारण शहरीकरण एवं वर्षा का कम होना है। भूमिगत जल संरक्षण हेतु जल निकासी स्रोत घर के पास हो तथा वृक्षारोपण हो ताकि जल के स्तर नीचा न जा सके। देश की जनसंख्या का लगभग 80% भाग कृषि पर आधारित अनाज हेतु हम कृषि पर निर्भर करते हैं। मुख्यतः किसान खरीफ रवि एवं गर्मा फसल उपजाते हैं। कृषि कार्य बगैर सिंचाई का संभव नहीं है। इस कार्य हेतु किसान संरक्षित जल का उपयोग करते हैं। देश को उन्नत बनाने हेतु अधिकाधिक अन्न उत्पादन करने की जरूरत है। कृषि की उन्नति पर ही सभ्यता संस्कृति कला उद्योग की उन्नति निर्भर करती है। संरक्षित जल पर ही कृषि कार्य निर्भर है। कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए नहर पोखर भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। इससे सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या का निदान होता है। देश के लोगों को पर्याप्त पोषाहार अर्थात अन्न उपलब्ध हो जाता है। संरक्षित जल की उपलब्धता से किसान वर्षा पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि वर्षा कभी समय पर होती है तो कभी समय पर नहीं होती है। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि होती है। जल संरक्षित रहने पर देश में खाद्य संकट की स्थिति नहीं आती। यह देश की शक्ति को छीन नहीं होने देता है। मानव का मुख्य आहार हमें कृषि से प्राप्त हो जाता है। जलाशयों पोखरों नहरों एवं सिंचित जल की उपलब्धता रहने पर हम अधिकाधिक फलदार वृक्ष एवं सब्जी की खेती कर फलों एवं साग सब्जी रूपी आहार को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब औसत वर्षा 35% से कम होती है तो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जल संरक्षित रहने पर इस स्थिति से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरत है गोविंद सागर सरदार सरोवर जैसे कृत्रिम जलाशय बनाने का, नदी घाटी परियोजना बनाकर सिंचाई के लिए जल एवं ऊर्जा के लिए विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। कोसी नदी घाटी परियोजना 14 लाख एकड़, सोन नदी घाटी परियोजना 4.5 लाख हेक्टेयर अकेले भूमि को सिंचित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार भाखरा नांगल बांध 7 लाख केवी, हीरा कुंड 2.7 लाख केवी, दामोदर घाटी 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। इस प्रकार की परियोजना जल संरक्षण एवं ऊर्जा उत्पादन दोनों में सहायक। जलाशयों एवं पोखरों में मछली का पालन कर हम अन्न के अलावा दूसरे खाद्य मछली को प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है। पानी फल सिंघारा का भी उत्पादन छोटे छोटे पोखरों में किया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अंडा एवं मछली का उत्पादन भी बढ़ा है। वर्ष 14-15 में मछली का उत्पादन 1.5 करोड़ टन रहा और दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अधिकाधिक पोखरों का निर्माण इस उद्योग को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। पशुओं का पोषाहार खेती से प्राप्त होते हैं। जल संरक्षित रहने से जंतुओं के आहार में भी कमी नहीं आएगी, जिससे हमें मांस दूध घी जैसे आहार

0: व्यक्ति विशेष यह खर्च वहन नहीं कर पाता। बाहर आने वाले क्षेत्रों में बांध परियोजना एवं नदी घाटी परियोजना का निर्माण होना चाहिए। किसानों को सहकारिता कृषि प्रणाली आज अपनाने का जरूरत है। जहां तक हो सके किसानों को व्यक्तिगत रूप से भी नलकूपों, कुओं, छोटे पोखरों की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उत्तम रह सके। मत्स्य उत्पादित करने वाले छोटे छोटे पोखरों, तालाबों को साफ सुथरा रखने का जरूरत है। अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन उचित देख रेख में होना चाहिए। उच्च क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल तथा समय समय पर खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था किसानों को करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो सके, देश में अकाल की समस्या ना आवे। सरकार द्वारा किसानों को मछली बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को मछली बिक्री केंद्र बनाना चाहिए। लोग यत्र तत्र बैठकर मछली बेचते हैं, यह उचित नहीं है। पौधों के पास नमी बना रहे इसके लिए हाइड्रोजेल प्रणाली का प्रशिक्षण किसानों को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इससे लोग अर्थात किसान तीन सिंचाई के बदले दो सिंचाई में भी अपने फसलों को सही रूप दे पाएंगे। साथ ही साथ वृक्षारोपण पर भी जोर देने का जरूरत है। समय समय पर उचित कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने का भी जरूरत है, तभी हम लोग जल संरक्षण में अपने आहार को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर पाने में सफल हो पाएंगे और अपने साथ साथ अपने देश को प्रगति के पथ पर पहुंचाने में सफल हो पाएंगे।
1: जी, जल संरक्षण में आहार और पोखर की भूमिका
2: जी
1: सचमुच आज बड़ी उपयोगिता है। और जल नल योजना भी हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी चलाए जो जा रहे हैं, उनका उद्देश्य है, उसका खास उद्देश्य है कि जल को संरक्षित करने के लिए बेहतर से बेहतर कैसे पर बहुत जगहों पर आसपास के क्षेत्रों में अन्नो भाई देखते हैं कि अच्छे सुंदर पोखर का सरकार के द्वारा निर्माण भी हुआ
2: जी,
1: है।
2: और उसका नवीनीकरण भी किया जा रहा है।
1: चारों तरफ क्या सीढ़ियां बनी हुई है, उसमें से मछलियों का उछलना बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य
2: जी को भी, और आसपास का माहौल भी सुरक्षित रहता है, तो इससे हमारे जो आसपास के जीव जंतु रहते हैं वे भी अपने तालाबों में सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, लगे हाथ कुछ संदेशों को सुनते हैं
2: जी। बिल्कुल,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बहुत सारे संदेशों को हम लोग अन्नो भाई सुने
2: जी,
1: और हमारे सामाजिक वातावरण में गीत संगीत के बड़े अहम स्थान हैं, खास करके जो क्षेत्रीय स्तर पर जो गीत संगीत होते हैं सामाजिक जीवन में, चाहे शादी ब्याह के समय मंडप गीत हो, कोहवर गीत हो, लगन गीत हो, यज्ञोपवीत गीत हो, या सोहर हो, या फिर अभी के समय में हम आज भी समसामयिक कह सकते हैं, बड़ा परंपरागत गीत हैं जो हम लोग कभी सुनते हैं। और उसी क्रम में देखिए कि झूमर का भी एक स्थान आता है
2: जी,
1: कि जब भी आप सुनते हैं दिल दिमाग में एक जोश पैदा कर दे, झूमने के लिए जो है ना एक परिस्थिति बन जाती है।
2: बिल्कुल,
1: इसका सचमुच यही मूल रूप से वास्तविक आनंद है। बढ़िया से झूमर सुनते हैं अपने श्रोताओं के साथ।
2: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, अपरिहार्य कारणों से कुछ गीत संगीत हम, लेकिन पहले कुछ संदेशों को सुनते हैं। या देखिए अन्नो भाई, अभी बारिश के वजह से जो आंधी तूफान आए थे उससे हमारी जो खेती बाड़ी है प्रभावित हुए हैं। अभी जो परिस्थितियां बदली हैं, तो ऐसे परिस्थिति में किसान भाई समसामयिक कौन से खेती बाड़ी के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे जो कि आने वाले दिनों में वो अच्छा उत्पादन। चलिए पहले कुछ संदेश हैं उधर से गीत संगीत के, क्या तो पहले वही सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसान भाइयों से अपने बातचीत जारी रखेंगे।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अनु भाई, आज हमारे देखिए कुछ तकनीकी व्यवस्था में कुछ व्यवधान पड़ रहे हैं। इस
1: जी
0: वजह से हमारे श्रोताओं के साथ संपर्क जो है संवाद सूत्र कट रहे हैं।
1: जी
0: अभी देखिए किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है उसके बारे में जरा सा मौसम के मिजाज को देखते हुए जरा बताइए।
1: जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई के लिए मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है,
0: जी
1: क्योंकि मौसम के अनुरूप ही हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी
1: तो आगामी दिनों के दौरान
0: जी हाँ
1: जिले में एक से दो स्थानों पर गरज और चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान भी है। इसके साथ साथ अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता इस दौरान सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। वहीं हमारे सामान्य सलाह किसान भाइयों के लिए यह है कि आगामी दिनों में चूंकि वर्षा की संभावना हो रही है, तो उसको देखते हुए ही जो है खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित कर दें और खाद कीटनाशक का छिड़काव जो है वो आसमान साफ रहने पर ही करें, तो ये ज़्यादा कारगर होगा। जो किसान भाई हमारे गर्मा मूंग और उड़द की फसल जो लगाए हैं, तो देर से बोई गई मूंग और उड़द फसलों में हेरी कैटर पिलर के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। प्रकोप दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियन 50 EC से लेके जो है 2 मिलीलीटर पानी का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें, तो यह ज्यादा कारगर होगा। वहीं जो किसान भाई सब्जी उपजाए हुए हैं, सब्जी में भिंडी में माइट और फल और तना छेदक तथा कद्दू वर्गीय फसलों में जो है फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप दिखाई देने पर एथियन 1.5 से लेकर 2 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। भिंडी में फल और तना छेदक के प्रबंधन हेतु मेलाथियन 50 मिलीलीटर से लेकर 1 मिलीलीटर के बीच या डाइमेथोएट 30 EC से लेकर 1.5 मिलीलीटर प्रति पानी का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 EC से 2 मिली 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर में पानी मिलाकर छिड़काव करें। यह सारी प्रक्रिया आसमान साफ रहने पर ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं जो किसान भाई बागवानी की फसल कर रहे हैं, जैसा कि अभी आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमाम केक्टिन जो है बेंजोएट 2 मिलीग्राम प्रति लीटर या फिर लैम्बडा साई हेलोथ्रीन 2 मिलीलीटर पानी छिड़काव करें। बागानों में पर्याप्त एवं निरंतर नमी बनाए रखने की सलाह भी दी जाती है।
0: जी अन्नो भाई, किसान भाइयों से ये भी आग्रह करेंगे कि जो किसान भाई बड़े पैमाने पर बाग बगीचा लगाते हैं, या अभी जैसा आम के फसल के बारे में आप बता रहे थे
1: जी,
0: कि आम कुछ क्षेत्रों में आए हैं और कुछ क्षेत्रों में छिटपुट आए हैं
1: जी,
0: लेकिन अभी जो है वैसे किसान भाई जो कि आने वाले दिनों में बागवानी करेंगे आम के, आपके शीशम के, कटहल के, लीची के जो पेड़ पौधे लगाएंगे, तो अभी सबसे उपयुक्त समय है कि आप गड्ढा बढ़िया से बनाइए, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं उस आकार में आप गड्ढे बनाइए। और अभी के समय उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना अन्नो भाई, तो उस धूप से, चूंकि तपिश भी बहुत ज्यादा है,
1: जी
0: तो उस धूप की किरण से, सूर्य की किरण से वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं
1: जी।
0: इसका फायदा ये होता है कि जब जुलाई के महीने में जो
1: मानसून का आगमन होगा,
0: हाँ
1: किशन भाई,
0: तो उस समय,
1: तो उससे पहले ही हमारे किसान भाई जो है खेतों की अच्छी तरह से अगर निकाई गुड़ाई करते हुए गड्ढे अगर बना लेते हैं तो वो अगर चाहे तो अगले सीजन के लिए जो है नए आम का पौधा
0: जी जी
1: अवश्य लगा सकते हैं।
0: उसमें उसमें बल्कि अगले साल क्यों अन्नो भाई, हम तो तैयारी अभी से शुरू किए हैं और जुलाई के महीने में हम उसको लगाएंगे। और एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि जब आप उस गड्ढे को भरते हैं कुछ खाद मिश्रण वगैरह मिला करके तीन हिस्से में, तो प्रयास ये होना चाहिए अन्नो भाई कि उस जगह जिस गड्ढे के ऊपर में आप आम का गाछ लगाएंगे तो थोड़ा सा सतह लेवल ऊंचा हो सामान्य जमीन से। इससे होगा कि छोटे नवजात जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो पानी जड़ में जमेगा नहीं
1: जी,
0: तो
1: और पौधा मरने से भी बच जाएगा।
0: और चूंकि गड्ढा हम किए हुए हैं तो जड़ भी तेजी से जमीन के अंदर उसका जाता है, फैलता है, तो वृक्ष जो है बड़े अच्छे ढंग से फैलते हैं, लगते हैं
1: जी।
0: आज हम लोग प्रायोजित कार्यक्रम सुनते हैं अन्नो भाई, आयुष्मान
1: जी,
0: तो शुरू करते हैं।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 620-680-3040, 620-680-3040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पर। और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि, हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामणि, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
0: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
1: देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
0: अच्छा एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में कैसे आती है?
1: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफकोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत की देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
0: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040, ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या

0: सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं, 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
4: किसान
3: भाइयों, आपका ध्यान हम दिलाना चाहते हैं, खास करके अभी पपीता की खेती आसपास के क्षेत्रों में, दोमट काली मिट्टी जो भी हो, तो उसमें बढ़िया से मुड़ेरा बनाइए, और लगभग 6 महीने तक, अभी तो कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे किस्मों का वो आविष्कार किया है कि आप सालों भर पपीता की खेती कर सकते हैं। थोड़ी ढलान रहनी चाहिए जमीन में, और बेहतर दोमट मिट्टी और थोड़ी बलुआही मिट्टी बड़ी उपयुक्त तो होते हैं। भागलपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में किसानों में इस तरह की भावनाएं आई है कि पपीता की खेती किया जाए, और सच पूछिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये आमदनी देने वाला फसल है। किसी भी रूप में 3-4 चास आप खेत की जुताई कीजिए, और मिट्टी पलटने वाले पाटा से बढ़िया से भुरभुरी कर लें, फिर आप मुड़ेरा बनाएं, उसके बाद बारीकी से 3-3 फीट की दूरी के ऊपर आप गाछ लगाएं,

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं
0: आराधना कुमारी।
1: आराधना कुमारी।
0: पहले
1: मुख्य समाचार।
0: मुख्य समाचार।
1: झारखंड समेत नौ राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग
0: परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर
1: बुनियादी ढांचे के विकास
0: के जुटाने के प्रयास तेज।
1: आईआईटी आईएसएम धनबाद में
0: बीसीसीएल के
1: सीएसआर पहल के तहत
0: छात्रों के लिए
1: स्टेम शिक्षा
0: पर एक
1: दिवसीय कार्यशाला का किया
0: गया
1: आयोजन।
0: जिले के सारंडा
1: पश्चिमी
0: वन प्रमंडल
1: जिले के सारंडा
0: वन प्रमंडल ग्रामीणों के बीच
1: 22 लाख
0: पीड़ित ग्रामीणों के बीच
1: 22 लाख रुपए से
0: अधिक
1: किया गया वितरण।
0: मुआवजा राशि
1: राष्ट्रीय महिला आयोग ने
0: देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपने
1: मुस्लिम महिलाओं
0: से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
1: सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
0: राज्य के तीन पहलवान एशियन गेम्स 2026 के एशियन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना।
1: अब समाचार विस्तार से।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
1: वित्त वर्ष 2026-27
0: के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के
1: मुद्रीकरण के लिए
0: राष्ट्रीय राजमार्ग
1: सूची को अंतिम रूप दे दिया है।
0: अस्थायी सूची को
1: अंतिम रूप दे दिया है।
0: राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि
1: खंडों की कुल लंबाई
0: 1659 किलोमीटर
1: झारखंड हरियाणा कर्नाटक
0: उत्तर प्रदेश तमिलनाडु
1: और महाराष्ट्र
0: उत्तर प्रदेश
1: बिहार
0: और महाराष्ट्र
1: सहित नौ राज्यों में फैले हुए।
0: पहल का उद्देश्य परिचालन
1: राष्ट्रीय राजमार्ग
0: का लाभ उठाकर
1: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
0: निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और
1: राष्ट्रीय राजमार्ग
0: नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है।
2: उपाय बनाने की जरूरत है।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद के एडिटोरियम में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के लिए अंडर प्रिविलेज्ड और प्रोजेक्ट रूम के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित

0: छात्रों को विज्ञान तकनीक गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
1: उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहतर जरूरी है।
0: ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडावन प्रमंडल की ओर से आज ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया।
1: डीएफओ अभिरूप सिंह के नेतृत्व में संसदा रेंज अंतर्गत और नवागांव को सहायता राशि प्रदान
0: कार्यक्रम संगदा रेंज कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां हाथियों के हमले में घर टूटने, फसल बर्बाद, जानमाल की क्षति झेलने वाले ग्रामीणों
1: मुखिया लिपि मुंडा की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों ने राशि का भुगतान किया।
0: राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपी है। यह रिपोर्ट व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका भर में मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना है।
1: आयोग ने कहा कि हाल के कानूनी सुधारों से महिलाओं को मजबूती मिली है, लेकिन कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने की
0: आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsaar.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: ताज़ा समाचार एक्स हैंडल एट AIR न्यूज़ और फेसबुक अलर्ट ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है।
0: प्रादेशिक समाचार एकांश के AIR न्यूज़ अंडरस्कोर रांची और आकाशवाणी न्यूज़ रांची इंस्टाग्राम पेज चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में आज शांतिपूर्ण मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य के विभिन्न मस्जिदों में नमाज की विशेष व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा और शांति पूर्ण माहौल में बकरीद मनाने को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।
1: बकरीद पैगंबर हजरत
0: अल्लाह के प्रति दिखाए विश्वास और समर्पण की याद में मनाई जाती है।
1: इस दौरान राजधानी रांची समेत
0: राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखी गई
1: प्रशासन की तत्परता।
0: रांची जिले के चान्हो प्रखंड टोली में एक परिवार के महिला पुरुष और तीन साल के मासूम बच्चे के साथ मारपीट की घटना को भारतीय जनता पार्टी में निंदनीय बताया है। घटना के चार दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जमशेदपुर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात्रि गश्ती और टेंगू मोबाइल की निगरानी तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत टेल्को थाना पुलिस ने बंद घर में चोरी की कोशिश कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि LFS स्कूल के सामने एक बंद क्वार्टर में चोरी का प्रयास कर रहे दो युवकों को पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की।
2: उनके पास से कुल 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी जैसा जो पदार्थ है, जिसके लिए कुछ चीज ले ली, एक ताला काटने का सामान जो हम बता रहे थे, ऐसा नगद राशि 58,130 रुपए बरामद हुए हैं। एक जो स्प्लेंडर बाइक जो वैसे बाहर खड़ी थी वो भी हमने सीज किया है।
0: माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और विपक्ष के नेता पिनराई विजयन के प्रति प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की वाम दलों ने आलोचना की है। इस संबंध में वाम दलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी की कथित रूप से हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ वाम दल 29 मई से 1 जून तक राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पिनराई विजयन के घर पर की गई छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। माकपा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया गया है, पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। पलामू जिले के पड़ा थाना क्षेत्र के बटसारा में कुटी काटने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। आज सुबह बटसारा गांव के खलिहान में ट्रैक्टर में लगी कुटी मशीन से पुआल काटने के दौरान उनका हाथ अंदर मशीन में चला गया और अधिक खून बह जाने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पड़ा थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेदिनीलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया। राज्य के तीन पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के रांची से रवाना हुए हैं। रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार दिल्ली और लखनऊ में आयोजित ट्रायल में भाग लेकर भारतीय कुश्ती टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने इसे राज्य के खेल इतिहास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ियों की मेहनत और खेल विभाग के सहयोग की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत 9 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाने के प्रयास तेज। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडावन प्रमंडल की ओर से आज हाथी पीड़ित ग्रामीणों के बीच 22 लाख रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का किया गया वितरण। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और राज्य के तीन पहलवान एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए रांची से हुए रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव। इनसे सुनिए लोकगीत।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव। अब इनसे सुनिए झूमर।
1: रिमझिम

0: श्रोताओं माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी की वजह से हम ये झूमर आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
2: सुबह के सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
3: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
2: रूबरू होंगे आप खबरों से,
3: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
2: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
3: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
2: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
3: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
2: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
3: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458

0: किलो हर्ट्ज पर।
1: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
0: तो जरूर सुनिए
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बक्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:25 होने ही वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर कहा कि श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि PMAYG के तहत 4,95,00,000 आवास के लक्ष्य के मुकाबले 3,91,00,000 आवास को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAYG के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
1: कल राष्ट्रपति जी को महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी है। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है, उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद

0: संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है।
2: कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं, मुझे फिर दोहराते हुए खुशी है कि इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है, जो बिहार सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य परिचालनशील राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना है। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद आज पूरी अकीदत और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। एक रिपोर्ट।
3: त्याग और समर्पण के संदेश का पर्व बकरीद को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। अमन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रदेश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में भी विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन तथा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
0: शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 26 से 28 मई तक बेंगलुरु में खेले गए इस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बताया कि शैलेश कुमार और हिमांशु यादव ने पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य के मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ 39.9 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 में घर का हिस्सा गिरने से 1 व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में तेज आंधी और बारिश के दौरान कच्चे मकान के ऊपर एक पेड़ गिरने से 1 महिला की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी और दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड के भोजपुर गाँव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का पोल गिरने से 1 महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर शोक जताया और मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने हजारों युवाओं को नौकरी दिए। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ जो 27 मई तक चला। मेले में कुल 10,882 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में जर्मनी, जापान, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान समेत विभिन्न देशों में 1,984 प्रतिभागियों को रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में भाग लेने आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने अपना अनुभव साझा किया।
3: भरोसेमंद मेला है के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई ITI किया है उसको भी जॉब मिल रहा है और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
2: रोजगार मेले के सफल समापन के अवसर पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने चयनित युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियारा के पास आज सुबह एक नाव हादसे में 3 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट।
2: आज समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहिउद्दीन नगर से वापस लौटने के दौरान एक नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना सुबह लगभग 5:45 पर हुई। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बींद टोली के कुल 14 लोग नाव पर सवार थे। राहत और बचाव दल के द्वारा 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि अब तक 3 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। अन्य 4 लापता लोगों की खोज की जा रही है। समस्तीपुर जिला प्रशासन और पटना जिला प्रशासन के द्वारा समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।

0: मुंगेर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास खड़ी एक पिकअप वाहन से 15 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप और 180 लीटर शराब जब्त की है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक और पहाड़ी क्षेत्र ऋषि कुंड मलमास मेले घूमने आई एक बच्ची की कुंड में स्नान करने के दौरान मौत हो गई। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 1032 बोतल केन बियर बरामद किया है। वाहन में सवार दो व्यक्ति भागने में सफल हो गए। वहीं जिले के शेखोपुर सराय के डोबाडीह से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय बाईपास रोड के नोनही मोड़ के पास एक ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एक नेपाली नागरिक को 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कंकौल गांव में एक बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत एनडीए नेताओं से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां जारी की। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन सुबह 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
1: लखीसराय जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 562 एकड़ भूमि चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि भविष्य में यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। वर्तमान में लखीसराय बियाडा क्षेत्र में कुल 23 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 21 संचालित हैं। इनमें 20 राइस मिल शामिल है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रूपेश कुमार झा ने बताया कि सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के 12 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदन अधिकारियों को सौंपे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार बालगुजर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सह ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बढ़िया प्रखंड के पाली, लखीसराय के महिसोना और हलसी के कैंदी पंचायत में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। लखीसराय बाईपास रोड ओवरब्रिज के स्पैन में दरार आने के बाद प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव द्वारा की गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बाईपास रोड ओवरब्रिज के दोनों छोर पर लोहे का बैरियर लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 30.74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पिपरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय भवन निर्माण के शिलान्यास में भाग लिया। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने वाले जिले के 15 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिवों पर लगातार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने और हड़ताल पर रहने का आरोप है। जिले के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। बीते दिन पटना में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत जिले की सभी 76 पंचायतों के राजस्व गांवों में अगले 30 मई तक विशेष अभियान चलाकर किसानों का आईडी बनाया जाएगा। सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को फार्मर आईडी अभियान का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इधर राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभान्वित पेंशनधारियों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा पेंशनधारियों को नया डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन भुगतान को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार जब तक लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, तब तक उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी जाएगी। जिले में अब तक 30,567 पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की निदेशक प्राची कुमारी ने बताया कि पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लखीसराय संग्रहालय में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कला संस्कृति प्राधिकारी सह संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष मृणाल रंजन ने किया।
0: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:52 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार हैं रत्ना। प्रारंभ में इनसे सुनिए विद्यापति का लिखा भजन।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम सुरलहरी में कलाकार रत्ना की आवाज़ को। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म जवी मेट से ये नगमा, जिसे गाया है उस्ताद सुल्तान खान ने। संगीत है संदेश शांडिल्य का।

0: remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
1: Nexa.
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा श्रोताओं अगला नगमा सुनिए फिल्म सिर्फ तुम से आवाज है उदित नारायण की बोल लिखे हैं समीर ने और गीत की रचना की है नदीम श्रवण ने

0: आकाशवाणी एट 90 Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। श्रोताओं आप सुनिए सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म है अपनी, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और गीतकार हैं समीर।

श्रोताओं आप सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है ए दिल है मुश्किल, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए। फिल्म हीरोज से गायक कलाकार हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति। संगीतकार हैं साजिद वाजिद और शब्द रचना की है जलीश शेरवानी ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वीर से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और साथियों की, धुन बनाई है साजिद वाजिद ने और गीत की रचना की है गुलजार ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म बॉस से, जिसे गाया है निखिल डिसूजा ने। धुन तैयार की है चितरंजन भट्ट ने और गीतकार है मनोज यादव।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में

आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिकारों से खिताब करते हुए डी के शिव कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ 91 लाख मकानों को पहले

0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो ख्वातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों खासतौर पर ख्वातीन गरीबों और बच्चों के मामलों से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुज़ाकरात बहसो मुबासे इत्तफाक राय और इख्तलाफ राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिल्ला ने कहा कि इस मजमूए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर मुमलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सके। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरेमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की

0: रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि दो या तीन पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से नसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी नहीं मिला। ये लासानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। निहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, कुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले तीन दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
2: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:31 हो रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है स्वीकार किया मैंने। गीतकार हैं निधा फाजली और संगीत है उषा खन्ना का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म सरगम से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए फिल्म दीवाना से। गायक कलाकार हैं कुमार शानू। इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं आप सुनिए फिल्म प्यासा सावन से ये नगमा, जिसे गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए फिल्म शोर से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। शब्द रचना की है संतोष आनंद ने और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं अली अकबर खान। इनसे सुनिए राग रागेश्री।

पानी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म हमराज से ये नगमा, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं शाहिर और संगीत है रवि का।

श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। शब्द रचना नरेंद्र शर्मा की है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं आप सुनिए फिल्म निकाह से ये गीत, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने, बोल लिखे हैं हसन कमाल ने और गीत की रचना की है मदन मोहन ने।
1: अलविदा मत कहो।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। श्रोताओं, अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है श्री 420। बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जय किशन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनिए, फिल्म कभी कभी से। गायन स्वर है मुकेश का, गीत की रचना की है शाहिर ने और संगीत है खय्याम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक

0: घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 205.7, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 100.1 मेगा

मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। हम कल प्रातः 5:48 पर पुनः उपस्थित होंगे अपने केंद्र से कल प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के साथ। अभी अनुमति दीजिए